0: साहब 2024 में जब इलेक्शन कमिश्नर को बनाने का कानून लाया गया था, भारत की पार्लियामेंट में अगर किसी ने खड़े होकर इस कानून की गलतियां और कमजोरियां बताई, उस पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन था। आप जाकर देखिए, वीडियो आज भी है। अपोजिशन के लोग जो बोल नहीं सके, वो बात असदुद्दीन ओवैसी ने आपके तरफ से रखी थी। हमने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि अगर इलेक्शन कमिश्नर का अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री और उनके बनाए एक वजीर और कायद हिजब इख्तलाफ का सिलेक्शन में है कमेटी में होगा, तो जाहिर है प्रधानमंत्री अपने आदमी को एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाएंगे।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: payment apps, but which one is safe?
1: Then switch to Bheem. It is completely safe and reliable. Keep getting rewards as well. You can also get 40 rupees cash back on your first payment above 40 rupees. Use Bheem app to pay.
2: It's the Mahi way.
3: हर बार वही गोल्ड ज्वेलरी कैसे पहन सकती हूँ? पर इस जमाने में नई नई गोल्ड ज्वेलरी खरीदना भी तो इम्प्रैक्टिकल है. तो फिर सेनको का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज.
4: एंजॉय करें 0% डिडक्शन किसी भी ज्वेलर के गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज पर और खरीदें अपने पसंदीदा सेनको गहने.

एक जूनियर पार्टनर और परजीवी पार्टी बनकर रह गई है कांग्रेस। मित्रों, कांग्रेस कुर्सी के लिए अब संवैधानिक संस्थाओं पर हमले कर रही है। वो जनता का दिल नहीं जीत सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो देश की जनता के दिलों पर राज करते हैं, और इसलिए जब वो कहते हैं विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ चलाते हुए, जब वो देश से आह्वान करते हैं वी विल डू इट, तो पूरा देश कहता है वी विल डू इट। और इसलिए परेशान कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करके सड़कों पे अराजकता और दंगे फैला के झूठ बोलकर गुमराह करके अब कुर्सी चाहती, सत्ता में वापसी चाहती। कांग्रेस की हालत यह कि कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में नहीं आता तो कोर्ट पर हमले करती है, चुनाव हारती तो चुनाव आयोग पर हमले करती है, आतंकवादियों को जब सेना ठोंकती है तो सेना पर हमले करती है। भारत की प्रगति और 140 करोड़ देशवासियों के भरोसे को पचा पाना कांग्रेस के लिए असंभव हो गया है।

0: आप महामहिम राष्ट्रपति जी के पास गए, वहां पर भी आपको कहा गया कि शिकायत के साथ सबूत दीजिए, तो आप बगले झांकने लगे, भाग गए, चुप्पी साध ली। और सुप्रीम कोर्ट ने तो श्रीमान राहुल गांधी जी से साफ साफ कह दिया कि कोर्ट को आप अपनी राजनीति का रणक्षेत्र नहीं बना सकते। इनका फंडा बहुत क्लियर है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का, राज नहीं तो अराजकता फैला दो। क्यों राहुल गांधी जी कहने के लिए तो नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन एक ऐसे नेता हैं जिनको न तथ्यों का पता है, न तर्क का पता है, न नियम कायदे कानून का पता है। उन्हें तो बस इतना पता है कि अराजकता फैलानी कैसे है, अस्थिरता लानी कैसे है, संवैधानिक पदों को और संस्थाओं को नीचे दिखाना कैसे है, और दुनिया भर में भारत का नाम बदनाम कैसे करना, छवि को कमजोर कैसे करना है। ये दुर्भाग्य है देश को कभी इतना अस्थिर, अराजक, अगंभीर नेता प्रतिपक्ष के तमाशे और नखरे नहीं देखने पड़े।
1: एयर इंडिया महाराजा क्लब, एक्सपीरियंस दैट स्पेशल फीलिंग। को पावर्ड बाय वेका, इंडियाज लार्जेस्ट सेलिंग यूपीवीसी विंडो। तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज, अ विन फॉर यू, अ विन फॉर इंडिया।

0: यार लोन भूल गया मैरी इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन्ड कार लोन टू व्हीलर लोन
2: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
3: इट उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: Welcome back. You're watching The Burning Question on India Today with me, Anjali Pandey. And right now we're getting some breaking news. Leader of opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, will be hosting a high tea for the India Bloc MPs, civil society members and student organizations at his New Delhi residence today. The gathering comes a day after opposition leaders, activists and civil society representatives took part in a march for democracy in the national capital and moved the Supreme Court over allegations of electoral irregularities and vote choring. The high tea scheduled for 4 p.m. today at Rahul Gandhi's residence on Suneri Bagh Road will follow a joint press conference by India Bloc leaders in the afternoon. Now, the opposition has challenged the Election Commission's special intensive revision of electoral rolls, alleging irregularities in the voter list revision process. And the opposition bloc has also sought judicial intervention and greater scrutiny of the process. They've already filed a petition, although there are 14 flaws which have been flagged by the Supreme Court registry and that need to be rectified. But today there's a high tea meeting that will be held at Rahul Gandhi's residence. My colleague Moshmi Singh is now joining us with more details on this. Moshmi, a very good morning to you. Give us more details on what all is on the agenda of this high tea meeting, in which not just the India Bloc leaders, but also the civil society members have been invited.
1: A very good morning to you and all our viewers. It's been an action-packed last week and a Monday yesterday. And, you know, the news trickled in last night that Rahul Gandhi will, in fact, be hosting a tea at about 4 p.m. That is actually a follow-up of the press conference that the India Bloc leaders will have prior to this. Now, the venue has to be locked in, but it could be Constitution Club, where we saw India Bloc leaders assemble. But more than the venue, it is the messaging that is really important. We know of the fact that top leaders of the India Bloc are already camping in the national capital. There was a buzz yesterday that a press conference was on the cards. In fact, I told Akshita last evening in the bulletin that probably the next move could be a joint press conference, since Rahul Gandhi did a sole press conference in the morning on Monday. So that's on the cards, and then it will be followed by the high tea. Now, importantly, it's the Suneri Bagh Lane where the invite is. That's Rahul Gandhi's residence. And, you know, I won't rule out any possibility or probability in terms of what could follow that tea at 4 p.m. It's a reasonably early time for tea. It's at 4 p.m. and Amit Shah's residence, or perhaps important locations are not far off.
0: All right, Moshmi, thank you for those details on the high tea meeting that will be held at Rahul Gandhi's residence today. And we have some more news coming in. And CJP co-convener Saurav Das has once again been taken into custody by the Delhi police. That's the big breaking news that's coming in. Saurav Das had come to Jantar Mantar with some of his associates. And in fact, not just Saurav Das, but another co-convener of the Cockroach Janata Party, Ashutosh Ranka, has also been detained by the cops. So the two co-conveners, Ashutosh Ranka and Saurav Das, have been detained by the Delhi cops in the national capital. They were trying to move towards Jantar Mantar. Now, it is important to note that Jantar Mantar has been denotified as a STIR site, and this move was announced yesterday. And despite that, we are now showing you the visuals of the entire chasing sequence between the cops and the CJP leaders, how they were trying to move towards Jantar Mantar holding a tricolour. And you can see Saurav Das and Ashutosh Ranka in these visuals. Ashutosh Ranka can be seen with the tricolour, and that is when they were detained by the Delhi cops.
2: Hello.
0: The CJP leaders, they tried to enter Jantar Mantar, and that is when they were also sloganeering Bharat Mata Ki Jai and Istifa, though, and that is when the cops detained them. My colleague Arvind Oja is now joining us with more details on this. Arvind, ek bar fir se Ashutosh Ranka aur Saurav Das ko detain kar liya gaya hai. Kya exactly hua Jantar Mantar ke paas?
2: देखिए, सौरभ दास और आशुतोष रांका ये पहुंचे हुए थे जंतर मंतर के पास प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि बीएमएस की धारा 163 लागू है और इस वजह से दिल्ली पुलिस इन दोनों को डिटेन कर लिया है और डिटेंशन सेंटर जो बनाया गया है वहां पर लेकर दिल्ली पुलिस जा रही है। हैरानी की बात यह है दिल्ली पुलिस के अधिकारी के मुताबिक कि अभी एक दिन पहले ही परमिशन मांगी है सीजेपी ने प्रोटेस्ट की और उस पर अभी क्लियरेंस नहीं हुआ है और आज सौरभ दास और आशुतोष रांका जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के लिए पहुंच गए। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है, लेकिन जैसा कि आप बीते कुछ दिनों में देख पा रही है कि जंतर मंतर के आसपास कोई भी जो जाने की कोशिश कर रहा है दिल्ली पुलिस उसे डिटेन कर रही है और बाकायदा इसका प्रॉपर अनाउंसमेंट हुआ है कि नई दिल्ली में और जंतर मंतर के आसपास बीएमएस की धारा 163 लागू है, वहां पर कोई भी भीड़ या कोई भी प्रोटेस्ट इलीगल माना जाएगा। तो सौरभ दास आशुतोष रांका वहां पहुंचे प्रोटेस्ट के लिए, लेकिन उसके तुरंत बाद दिल्ली पुलिस की टीम वहां पर मौजूद थी। उन्होंने सौरभ दास आशुतोष रांका और कुछ और जो सीजेपी प्रोटेस्टर थे उनको डिटेन किया है और उनको जो एक साइट है जहां पर सबको डिटेन करके रखा जाता है वहां पर दिल्ली पुलिस लेकर गई है।
0: जी अरविंद, जो वीडियो रिलीज किया है सीजेपी ने उसमें देखा जा सकता है कि कैसे ये लोग एक गेट के ऊपर से कूदते हुए दिख रहे हैं। ये क्या ये जंतर मंतर का गेट है? और अगर ये जंतर मंतर का गेट है तो ये लोग वहां तक भी कैसे पहुंच गए, क्योंकि सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो है वो अभी भी दिल्ली में बरकरार है।
2: जंतर मंतर के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, जंतर मंतर तक तो ये लोग नहीं पहुंच पाए थे क्योंकि काफी वहां पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, लेकिन ये बीते दिनों कई दिनों से देखा जा रहा है कि एक तरह का ये जो फ्लैश प्रोटेस्ट है वो जो प्रोटेस्टर है वो करते हैं, दो से चार की संख्या में वो किसी तरह से चुपचाप पहुंचते हैं उसके बाद प्रोटेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सौरभ दास और आशुतोष रांका ने भी वही करने की कोशिश की, लेकिन नई दिल्ली में पुलिस इतनी बड़ी संख्या में तैनात है, हर शख्स पर नजर रखी जा रही है, तो कोई कम से कम जंतर मंतर के आसपास अगर पहुंचने की कोशिश करता तो उसको डिटेन कर लिया जाता, तो इन लोगों को भी डिटेन कर लिया गया है।
0: जी अरविंद, हमारे साथ बने रहिए। सो दीज आर द विजुअल्स दैट हैव बीन रिलीज्ड बाय द सीजेपी इन विच यू कैन क्लियरली सी आशुतोष रांका एंड सौरभ दास अलोंग विद अदर 2 to 3 वर्कर्स ऑफ द सीजेपी। दे आर होल्डिंग ट्राइकलर, दे आर रेजिंग स्लोगन्स एंड दे वर ऑल्सो सीन क्लाइंबिंग द गेट एंड दिस इज नियर जंतर मंतर। And what they have posted, they've posted this video with the caption, Hands off Jantar Mantar. Now, it is important to note that this comes just a day after Jantar Mantar was denotified as a protest site. And there were other 3 venues, including the Ramlila ground, the CBD ground, the Burari ground, that was listed as the new protest site. And none of them are in the New Delhi region. My colleague Himanshu Mishra is also now joining us with more details on this. Himanshu, ye jo video release ki hai CJP ne, usme jo caption diya gaya hai, उसमें लिखा है हैंड्स ऑफ जंतर मंतर, तो क्या ये जो फ्लैश प्रोटेस्ट है आज ये सीईसी के अगेंस्ट था या ये इस डिसीजन के अगेंस्ट था कि जंतर मंतर अब एक प्रोटेस्ट साइट नहीं है?
3: देखिए, जो पूरा मूवमेंट है, जो ये पूरा प्रोटेस्ट है वो तो ईसी के खिलाफ था, लेकिन आज का जो अभी का ये फ्लैश प्रोटेस्ट था जो अचानक से कुछ लोग पहुंचते हैं बैक गेट की तरफ से और एक जो गेट था उसे क्रॉस करके आते हैं और बाकायदा वीडियोग्राफी करते हुए वो निकलते हैं, ये बेसिकली जंतर मंतर को जब से डी नोटिफाई किया गया कि यहां पर अब ये प्रोटेस्ट साइट नहीं है, 3 अलग अलग जगहों पर है, संख्या के आधार पर सीबीडी ग्राउंड या रामलीला मैदान या जो बाहरी दिल्ली का बुराड़ी का इलाका है वहां पर प्रोटेस्ट होगा, तो उसके बाद से ये लोग पहुंचते हैं, गेट क्रॉस करके पहुंचते हैं और बकायदा वीडियोग्राफी करते हैं और उसके बाद उन सभी लोगों को, चूंकि आप देखिए एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, ये पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर की, यहां की तैनाती देखिए, रोड्स भले ही ओपन है लेकिन सिक्योरिटी अगर आप देखेंगे तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट में कहीं कोई कमी नहीं आई है, पुलिस की तैनाती थी, साथ साथ बसें भी तैनात है, क्योंकि पुलिस को पहले से भी अंदाजा था कि फ्लैश प्रोटेस्ट अरेस्ट हो सकते हैं, छिटपुट जगहों पर पहुंच सकते हैं प्रदर्शनकारी, तो उसको देखते हुए तैयारी थी। और आप देखिए जैसे ही ये तमाम लोग वहां पर पहुंचते हैं, सभी लोगों को डिटेन किया गया, और डिटेन करने के तुरंत बाद जो बसें पहले से तैनात हैं प्रदर्शनकारियों के लिए, उनमें उनको भरा गया, और उसके बाद फौरन उन सभी को लेकर के बस यहां से निकल गई है। तो चाहे आप ट्रैफिक के लिए अगर बात करें, हमने देखा कि ट्रैफिक के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है कई सड़कों को लेकर।

0: दिल्ली के तमाम इलाके, चाहे वो आप देखिए इस वक्त मैं संसद मार्ग थाने पे मौजूद हूँ, संसद मार्ग सामने अशोक रोड और इन पूरे इलाके में खासतौर से कनॉट प्लेस का जो आउटर सर्किल का इलाका है, इन सभी जगहों पर कभी भी डायवर्जन लगाया जा सकता है अगर प्रदर्शनकारी पहुंचते हैं। तो हमने देखा जो सुबह प्रदर्शनकारी पहुंचे सौरभ दास, उनके तमाम समर्थकों के साथ सौरभ दास को डिटेन किया गया और उन्हें आगे जो तमाम जगह बनाई गई है उन्हें पुलिस लेकर के चली गई है। तो पुलिस की सुरक्षा में भले ही आज किसी ने प्रोटेस्ट के लिए पहले कॉल न किया हो, लेकिन दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से तैनात है और कहीं ना कहीं पुलिस को इस बात की आशंका भी है कि इस तरीके के फ्लैश प्रोटेस्ट दिन में नई दिल्ली इलाके में खासतौर से जंतर मंतर और आसपास के इलाके में हो सकते हैं, इसलिए हर जगह पर पुलिस तैनात है और तुरंत एक्शन लेने की भी बात सामने आ रही है। तो अब देखना ये होगा कि आज जो इस तरीके का अभी जो फ्लैश प्रोटेस्ट हुआ इस पे पुलिस किस तरीके का एक्शन आगे लेती है।
1: जी हिमांशु, और हमने कल देखा था कि कैसे सीजेपी लीडर्स जो हैं वो पुलिस स्टेशन गए थे, पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन गए थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें बताया जाए कि कहाँ पे वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और उन्होंने ये भी थ्रेटन किया था कि अगर हमें 24 घंटे में नहीं बताया गया तो हम अपनी मर्जी से फिर प्रोटेस्ट करेंगे। तो क्या ये उसी का नतीजा है?
0: बिल्कुल, देखिए क्योंकि जो गतिरोध बना हुआ है वो स्थिति वही है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि अगर आपको प्रोटेस्ट करना है यहाँ पर, यही पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने वो लोग आए थे अपने तमाम समर्थकों के साथ, पुलिस का यहाँ पे कहना है कि जब 7 तारीख को भी वो प्रोटेस्ट की मांग लेकर के आए थे और उनको डिनाई किया गया था, तो दो वजह इम्पोर्टेंट बताई गई थी। नंबर एक वजह जो थी वो ये कि कम से कम 10 दिन पहले आपको प्रोटेस्ट की इजाजत मांगनी होगी ताकि जो तमाम प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जा सके, और वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा गया था कि जो आचरण था, इनका बिहेवियर था, जो पहली बार इन्होंने जब प्रोटेस्ट की मंजूरी ली थी उसको देखते हुए भी इनके प्रोटेस्ट की जो परमिशन इन्होंने मांगी है उसको डिनाई किया जाता है। अब इस पूरे मामले में जिस तरीके की आशंका आज है नई दिल्ली इलाके में खासतौर से कि फ्लैश प्रोटेस्ट हो सकता है, उसको लेकर के पुलिस ने अपनी तैयारियां की है, ट्रैफिक पुलिस ने अलग तरीके से और सिक्योरिटी की अलग तरीके से, यहां पर पहला मिलिट्री फोर्सेज की भी तैनाती है, दिल्ली पुलिस की भी तैनाती है और पूरे नई दिल्ली इलाके में जगह जगह पर पुलिस ने इसीलिए बैरिकेड भी प्लेस किए हुए हैं कि अगर प्रदर्शनकारी पहुंचते हैं तो उन्हें मूवमेंट करने का ज्यादा मौका न मिले और जल्द से जल्द जहां पे वो शुरू करते हैं उन्हें वहीं पर डिटेन कर लिया जाए। तो इस तरीके की तैयारियां दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई हैं।
1: हिमांशु, हमने 2 दिन पहले ही देखा था कैसे 20 घंटे से भी ज्यादा वक्त के लिए कस्टडी में थे तीनों टॉप लीडर्स जो हैं सीजेपी के, चाहे वो अभिजीत दिपके हो, आशुतोष रांका हो, सौरभ दास हो, और एक कंडीशन भी जो जब इनको रिलीज किया गया तो एक कंडीशन बताई जा रही थी कि कंडीशन ये है कि इन्हें पीस मेंटेन करना है 1 साल के लिए। बावजूद उसके आज हमने ये प्रोटेस्ट देखा, क्या इनके लिए अब मुश्किलें और बढ़ सकती हैं?
0: देखिए लीगल मुश्किलें बिल्कुल बढ़ सकती हैं क्योंकि अब पूरे पुलिस एक्शन पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो जिस तरीके से गेट को कूद करके आए हैं, खुद पूरी वीडियोग्राफी करते रहे हैं, धारा 163 लागू है और लगातार इस पूरे इलाके में अगर हम कहें तो पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है, 24 घंटे अनाउंसमेंट जारी है कि कहीं पर भी अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं, धारा 163 लागू है, पुलिस के काम में बाधा डालते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लीगल एक्शन आपके अगेंस्ट में लिया जाएगा। तो फिलहाल दोनों को, सभी लोगों को डिटेन किया गया है, डिटेन करने के बाद उन्हें ले जाया गया है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में पुलिस आगे किस तरीके से बढ़ती है, क्योंकि देखिए FIR तो पहले भी दर्ज है, कई FIR इस पूरे मामले में हो चुकी है, लेकिन अब क्या एक तो जो ये प्रोटेस्ट हुआ अचानक से फ्लैश प्रोटेस्ट हुआ इसको लेकर के पुलिस आगे क्या एक्शन लेती है। जो हमें जानकारी मिली है कि जो सामने आप पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन देख रहे हैं यहाँ के अधिकारी अब अपनी लीगल टीम से भी संपर्क में है कि आगे इस पूरे मामले में किस तरीके से बढ़ना है, क्योंकि जिन शर्तों पर कोर्ट में इन्होंने जब इन्हें कोर्ट में पेश किया गया था तो जो शर्तें थी उसमें पीस मेंटेन करने की बात थी कम से कम पूरे 1 साल तक के लिए, लेकिन सीजेपी की तरफ से ये बात बिल्कुल क्लियर की गई थी कि वो जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट का जो अधिकार है वो खत्म किया गया उसको लेकर के वो आगे बढ़ेंगे। तो अब देखना ये होगा कि ये गतिरोध जो चल रहा है वो कहाँ पर जाकर के रुकता है।
1: बिल्कुल, और हिमांशु जो स्ट्रैटेजी है उसमें भी बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कैसे CJP पहले ही अनाउंस कर देती थी कि हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करने वाले हैं।

एक जूनियर पार्टनर और परजीवी पार्टी बनकर रह गई है कांग्रेस। मित्रों, कांग्रेस कुर्सी के लिए अब संवैधानिक संस्थाओं पर हमले कर रही है। वो जनता का दिल नहीं जीत सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो देश की जनता के दिलों पर राज करते हैं, और इसलिए जब वो कहते हैं विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ चलाते हुए, जब वो देश से आह्वान करते हैं वी विल डू इट, तो पूरा देश कहता है वी विल डू इट। और इसलिए परेशान कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करके सड़कों पे अराजकता और दंगे फैला के झूठ बोलकर गुमराह करके अब कुर्सी चाहती, सत्ता में वापसी चाहती। कांग्रेस की हालत यह कि कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में नहीं आता तो कोर्ट पर हमले करती है, चुनाव हारती तो चुनाव आयोग पर हमले करती है, आतंकवादियों को जब सेना ठोंकती है तो सेना पर हमले करती है। भारत की प्रगति और 140 करोड़ देशवासियों के भरोसे को पचा पाना कांग्रेस के लिए असंभव हो गया है।

0: साहब 2024 में जब इलेक्शन कमिश्नर को बनाने का कानून लाया गया था, भारत की पार्लियामेंट में अगर किसी ने खड़े होकर इस कानून की गलतियां और कमजोरियां बताई, उस पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन था। आप जाकर देखिए, वीडियो आज भी है। अपोजिशन के लोग जो बोल नहीं सके, वो बात असदुद्दीन ओवैसी ने आपके तरफ से रखी थी। हमने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि अगर इलेक्शन कमिश्नर का अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री और उनके बना है एक वजीर और कायदे हिजबे इख्तलाफ का सिलेक्शन में है कमेटी में होगा, तो जाहिर है प्रधानमंत्री अपने आदमी को एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाएंगे।
1: आप महामहिम राष्ट्रपति जी के पास गए, वहां पर भी आपको कहा गया कि शिकायत के साथ सबूत दीजिए, तो आप बगले झांकने लगे, भाग गए, चुप्पी साध ली। और सुप्रीम कोर्ट ने तो श्रीमान राहुल गांधी जी से साफ साफ कह दिया कि कोर्ट को आप अपनी राजनीति का रणक्षेत्र नहीं बना सकते। इनका फंडा बहुत क्लियर है, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का, राज नहीं तो अराजकता फैला दो। राहुल गांधी जी कहने के लिए तो नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन एक ऐसे नेता हैं जिनको न तथ्यों का पता है, न तर्क का पता है, न नियम कायदे कानून का पता है। उन्हें तो बस इतना पता है कि अराजकता फैलानी कैसे है, अस्थिरता लानी कैसे है, संवैधानिक पदों को और संस्थाओं को नीचे दिखाना कैसे है, और दुनिया भर में भारत का नाम बदनाम कैसे करना है, छवि को कमजोर कैसे करना है। यह दुर्भाग्य है देश को कभी इतना अस्थिर, अराजक, अगंभीर नेता प्रतिपक्ष के तमाशे और नखरे नहीं देखने पड़े।

0: एक्सिस बैंक दिल से ओपन
1: म्यूचुअल फंड्स सही है
2: गिरनार एक चाय हो जाए
3: AU स्मॉल फाइनेंस बैंक

0: CJP leaders Saurav Ashutosh and Shinde detained for CJP leaders forced entry into Jantar Mantar. On camera, cops chase and detain CJP leader Ranka after Jantar Mantar denotified as stir site. CJP leaders climbed the Jantar Mantar gate and have been detained. Dipke hits out, says you cannot denotify resistance. This is breaking news that we're bringing to you at this hour. CJP leaders have been detained after they tried climbing the gate of Jantar Mantar. Himanshu is joining me on this story. Himanshu, what exactly has happened? Kaun se gate pe chadhne ki koshish kar rahe the ye log? Kyunki Jantar Mantar jo protest site hai, wahan par barricading hai. Gate kaun sa hai jahan par wo jaane ki koshish kar rahe the?
1: ये देखिए, ये बैक साइड की एंट्री गेट है। बैक साइड पे अगर आप आते हैं, जो जंतर मंतर की मेन रोड है जहां से आप एंट्री करते हैं अगर अशोक रोड की तरफ से, तो उसके बैक साइड एक इनर जो कनेक्टिंग रोड है जिसे आप सर्विस लेन कह सकते हैं, वहां से अगर आप अंदर की तरफ आते हैं तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिसेज हैं और कुछ जो घर भी हैं वहां पर। तो उधर से होते हुए वो आए और एक गेट था जो जंतर मंतर की रोड से जोड़ता है, उस गेट पर लॉक था, तो उसको ये कूद करके जंतर मंतर की तरफ बढ़ते हैं। लगातार नारेबाजी भी कर रहे थे सौरव दास, आशुतोष राका, ये नारेबाजी कर रहे थे और ये आगे की तरफ बढ़ रहे थे। और पुलिस चूंकि तैनात थी, पुलिस को इस बात की भनक थी कहीं ना कहीं कि फ्लैश प्रोटेस्ट दिन भर में कुछ जगहों पर हो सकते हैं, इसलिए इस पूरे नई दिल्ली इलाके में, आप ये देखिए, मैं पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर मौजूद हूँ। ये अशोक रोड की तस्वीर है, आपको पुलिस नजर आएगी, पुलिस की मौजूदगी नजर आएगी, पैरामिलिट्री फोर्स नजर आएंगे, बैरिकेड्स नजर आएंगे, और यही कमोबेश तस्वीर इस पूरे इलाके की है। खास तौर से अगर हम बात करें तो जो पूरा इलाका जंतर मंतर के आसपास का है, कनॉट प्लेस के आसपास का है, इसी तरीके की सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए हैं और साथ साथ चूंकि प्रोटेस्टर्स पहुंच सकते हैं ये इंफॉर्मेशन है, तो इसलिए बसों की भी तैनाती की गई है। आप देखिए, जैसे ही ये पहुंचते हैं पुलिस एक्शन में आती है, सभी को डिटेन करती है और अब डिटेन करके उनको अनडिस्क्लोज लोकेशन पे ले जाया जा रहा है जहां पर उन्हें रखा जाएगा और आगे की लीगल कार्रवाई की जाएगी। अब हम ये देखना होगा क्योंकि जिस तरीके से एक साल तक शांति बनाए रखने की बात थी, उसके बाद जो जंतर मंतर है उसको डीनोटिफाई कर दिया गया है, वहां पर पहुंच करके प्रोटेस्ट करने की कोशिश, तो इन सभी मामलों में पुलिस क्या एक्शन लेती है, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में क्या इसको लेकर के कोई लीगल कार्रवाई इनिशिएट होती है, इस पर पूरी नजर बनी हुई है। फिलहाल तमाम जो अधिकारी हैं वो नजर बना के रखे हुए हैं नई दिल्ली इलाके की सुरक्षा पर, नजर बना के रखे हुए। आप देखिए अनिशा, पिछले कुछ समय की अगर हम बात करें, पिछले 10 दिनों की, तो इस पूरे नई दिल्ली इलाके में और खास तौर से ये जो थाना आप देख रही हैं मेरे पीछे, ये एकदम है और हर जगहों पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, कई सारी FIR दर्ज की गई है। तो अब पुलिस आगे कैसे इस पूरे मामले में बढ़ती है और गतिरोध कहां पर जाके खत्म होता है, इस पे सभी की नजर फिलहाल बनी हुई है। देखना ये होगा कि क्या पूरे दिन कुछ और जगहों पर CJP के द्वारा इस तरीके से फ्लैश प्रोटेस्ट किया जाएगा। जी
0: Himanshu, साथ बने रहे हमारे। Let's take a look at what's happening on the ground, the visuals that Himanshu is bringing to us from Jantar Mantar. What is that? Right, the visuals on your screens right now, viewers, are from the Jantar Mantar Road. The CJP has released that visual and my colleague Himanshu was also just there. Remember, the Jantar Mantar Road has been barricaded extensively, and you can see in your visuals right now, this is the gate which, as Himanshu was just explaining, is from the side lane to enter the Jantar Mantar road proper, and that is where these protesters jumped in, got inside, saying that you cannot denotify resistance. Remember, Jantar Mantar has been the site of protests in Delhi for decades now. It has become synonymous with protests in Delhi, and with the area now being denotified as a valid protest site in the national capital, anger is being shown by the CJP, saying that you cannot denotify resistance. Himanshu, of course, continues to be with me on this story. Himanshu, aap wahin par hain abhi. Kya chal raha hai filhal? Aap abhi keh rahe the ki in logon ko thane le jaya gaya. Kitne log hain? Kya keh rahe hain ye log?
1: देखिए, ये लोग तो नारेबाजी कर रहे थे. उन सभी को डिटेन करने के बाद अनडिस्क्लोज लोकेशन पे लेके जाया जा रहा है, और अब हमारी नजर इस पे है कि किस तरीके से लीगल एक्शन इस पूरे मामले में पुलिस लेती है. क्योंकि आप देखिए, सौरव दास और आशुतोष राका को जब अभी पकड़ा गया था उस दिन, तो उन्हें जब सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया तो 50,000 की सिक्योरिटी बॉन्ड पे छूटे थे, एक साल के लिए शांति बनाए रखने के लिए. अब एक जो प्रोटेस्ट लगातार सीजेपी कर रही है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि इसी को लेकर के उनका जो मेन मुद्दा है, इसी के रेजिग्नेशन को लेकर के, और वहीं आज जो यहाँ पर पहुंचे थे तो जो उनका मेन मुद्दा था वो तो उनके नारों में शामिल था ही अनिशा, साथ साथ वो जो जंतर मंतर को डीनोटिफाई किया गया है, जो प्रोटेस्ट साइट अब जंतर मंतर नहीं रह गया है, उसको लेकर के भी यहाँ पर नारेबाजी की जा रही थी. तो सिक्योरिटी अपनी जगह पर है, सिक्योरिटी इन प्लेस है पूरे नई दिल्ली इलाके में. देखिए, आपको कमोबेश जैसे आप देखेंगे सामने, आपको भीड़ से निपटने के लिए जो तमाम चीजें होती हैं वो आपको यहाँ थाने के बाहर नजर आएगी, और नई दिल्ली इलाके में जगह जगह बैरिकेड्स जगह पर हैं, सड़क से किनारे कर दिए गए हैं, सड़कें खोल दी गई हैं लोगों के लिए, लेकिन पुलिस मौजूद है, पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस मौजूद हैं, और जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया जा सकता है. ट्रैफिक पुलिस ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि सिचुएशन पे डिपेंड करेंगे, और सारी जैसे बसें हैं, सिक्योरिटी के इंतजाम है, और डिटेंशन के लिए भी जगह पुलिस ने पहले से तय कर रखी है. तो जो भी डिटेन किए जाएंगे उनको फौरन बसों में लेके जाया जाएगा, सिक्योरिटी में कहीं कोई कमी नहीं है. कि इस तरीके के जो फ्लैश प्रोटेस्ट है
0: वो पूरे बने रहेगा मेरे साथ में. ये हमारे पास एक वीडियो आ रहा है, द वीडियो दैट वी आर शोइंग टू यू राइट नाउ व्यूअर्स इज has been released by the CJP, Saurav Das, Abhishek Ranka and the Ashutosh Ranka and Ajinkya Shinde in the vehicle being taken away by the police. And this is the video that they have themselves released of being detained and being taken away. We are getting they're carrying the constitution copy with them, shouting slogans while they've been put in the vehicle and are being taken away. And as my colleague Himanshu was just saying, they have been taken to an undisclosed site right now. They've simply been detained and removed from the Jantar Mantar area where prohibitory orders are currently imposed by the Delhi police. But we'll have to wait and see what happens next. As Himanshu was just saying, they had filed a bond before the SEM, Executive Magistrate Court, saying that they will not break the law. They will maintain peace for the next year. So what happens next, we'll have to wait and see. Because remember, viewers, that bond is very, it is very rare for somebody to actually be asked to execute that bond. Normally, the procedure simply is that the police detains you, picks you up, takes you away and releases you away from the site where the prohibitory orders are imposed. But here we just saw the visuals of the CJP leaders being taken away in the vehicle. Himanshu is with me on this story. Himanshu, gaadi mein band karke in logon ko le jaya ja raha hai, gaadi ke andar se nare lagate hue, samvidhan ki kitab dikhate hue, ye sab ja rahe hain. क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको पुलिस से, कहाँ लेकर जाएंगे इनको, क्या इन्हें अरेस्ट किया जा सकता है, या सिर्फ जैसे कि नॉर्मली होता है सेक्शन 65 पुलिस एक्ट के अंतर्गत, कि अगर आप कहीं धरना देने गए हैं जहां पर आपको जाना अलाउड नहीं है तो आपको उठाकर कहीं दूर छोड़ाएंगे, क्या किया जा रहा है इस वक्त?
1: देखिए अनिशा, इस पूरे मामले में पुलिस फिलहाल लीगल जो उनकी टीम है उससे समझने की कोशिश कर रही है, क्योंकि FIR पहले दर्ज थी, उसके बाद पकड़े गए, पकड़ने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। वहां पर 50,000 की सिक्योरिटी दी गई, साल भर तक शांति बनाए रखने की बात थी। तो उसके बाद अब इस पूरे मामले में लीगली कैसे आगे बढ़ा जाए, पुलिस खुद इसको समझने की कोशिश कर रही है कि आगे, अभी हम भी नजर बना के रखे हुए कि पुलिस आगे क्या एक्शन लेती है, क्या जो आज प्रोटेस्ट हुआ इसको, इसके बाद पुलिस इस पूरे मामले में FIR दर्ज करेगी और FIR दर्ज करने के बाद गिरफ्तारी करेगी। तो हमारी नजर बनी हुई है, अभी फिलहाल पुलिस खुद अपनी लीगल टीम से संपर्क में है, लगातार बातचीत कर रही है और जो पिछले जो शर्तें थी उनका क्या उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ है इसको समझने की कोशिश की जा रही है। उसके आधार पर आगे का इस पूरे मामले में जो प्रोसीजर है वो बढ़ाया जाएगा। आप देखिए, क्योंकि अनिशा सिर्फ आज की बात नहीं करते, अगर हम देखें तो पिछले कुछ समय में, पिछले एक हफ्ते के अंदर नई दिल्ली इलाके में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको लेकर के 50 के करीब FIR दर्ज हो चुकी है और उन सभी मामलों में जांच जारी है। ऐसे में जब कोई दोबारा इस तरीके की गलती जब प्रोटेस्ट करता हुआ पकड़ा जाता है तो पुलिस उसमें क्या एक्शन लेती है उस पर अभी फिलहाल नजर बनी हुई है। हम लगातार पुलिस के संपर्क में है कि पुलिस क्या एक्शन लेती है सौरभ दास और अभिजीत राका और उनके साथ पकड़े गए तमाम प्रदर्शनकारियों पर। जी
0: जी बिल्कुल हिमांशु, दे ब्रिंगिंग अस दैट अपडेट। हिमांशु, इफ यू कैन जस्ट टॉक टू अस अबाउट द वीडियो, जो वीडियो रिलीज किया है इन लोगों ने, जैसे आप कह रहे हैं कि अभी पुलिस बताएगी कि क्या एक्शन लेने वाली है, लेकिन ये जो वीडियो सामने आया है कि ये लोग बैरिकेड टाप के, गेट टाप कर अंदर जंतर मंतर एरिया में गए, मेरा सवाल एक ये भी है कि जंतर मंतर को अब डीनोटिफाई कर दिया है, वहां पर धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं है, तब भी इतनी ज्यादा बैरिकेडिंग, पुलिस प्रेजेंस सब कुछ वहां पर अभी तक है और क्या हो रहा है वहां पर?
1: बिल्कुल, देखिए पुलिस की सिक्योरिटी में कहीं कोई कमी नहीं है। आप देखिए, संसद मार्ग पर मैं हूँ, ये सामने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना, इस पूरे इलाके में अगर आप देखेंगे तो आपकी पुलिस की पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की आपको तैनाती नजर आएगी। पुलिस की जो जब इस तरीके का अगर कभी सड़क पे हंगामा होता है तो उससे कैसे निपटा जाए, सामने आपको वज्र वाहन दिखेगा। अगर हम पीछे की तरफ अपने कैमरामैन इमैनुअल को बोलूंगा कि वो दिखाए, पीछे अगर आप देखेंगे तो ये पुलिस की विक्रांत यहां पर मौजूद है, चंद कदमों की दूरी पर यहां से जंतर मंतर है, जंतर मंतर पर जाने के जो तमाम रास्ते हैं वो बंद है। हालांकि बाकी सड़कों पर जो बैरिकेड थे उनको हटा लिया गया, ये जो संसद मार्ग है ये काफी समय तक बंद रहा, इसको पब्लिक के लिए पूरी तरीके से ओपन कर दिया गया है, लेकिन बैरिकेड है सड़क के किनारे कर दिए गए हैं। अनिशा, बैरिकेड है, सुरक्षा कर्मी तैनात है, जो ट्रैफिक पुलिस है वो अलर्ट मोड पे है कि अचानक से अगर प्रोटेस्ट होता है और ट्रैफिक डाइवर्ट करने की अगर नौबत आती है तो उससे कैसे निपटा जाए, तो ये पूरी तैयारी दिल्ली पुलिस की अपनी तरफ से है। और जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है फिलहाल आगे, अभी ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट नई दिल्ली इलाके में तो बने रहेंगे। जी अनिशा,
0: हिमांशु बने रहे हमारे साथ, वी आर ऑल्सो गेटिंग कॉमेंट फ्रॉम आशुतोष राका ऑन दिस इंटायर सिचुएशन, वॉट इज ही सेइंग, वॉट आर द CJP लीडर्स रियली सेइंग अबाउट ऑल ऑफ दिस।
2: जंतर मंतर को डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट से हटा दिया है, नरेंद्र मोदी को लगता है कि जंतर मंतर को डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट नहीं रखेंगे तो प्रोटेस्ट रुक जाएंगे, ऐसा नहीं है। जंतर मंतर अब पूरे देश में बनेगा, नरेंद्र मोदी को प्रॉब्लम जंतर मंतर एक लोकेशन से नहीं है, उनको प्रॉब्लम है प्रोटेस्ट से, ये हमें समझना पड़ेगा। एक डिक्टेटर को हमेशा प्रॉब्लम होती है प्रोटेस्ट से, द आइडिया ऑफ प्रोटेस्ट, उससे नरेंद्र मोदी को दिक्कत है। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि जंतर मंतर को डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट से हटाकर वो आंदोलन को खत्म कर सकते हैं, इस गलतफहमी में मत रहना। अब पूरे देश में आंदोलन होगा, पूरे दिल्ली भर में आंदोलन होगा, तुम्हारे इन सारी हरकतों से देश अब डरने वाला नहीं है।
0: So we just heard from Deep K, who's one of the founders of the CJP, saying that Jantar Mantar being denotified does not mean that protests will stop. He's in fact saying there will be Jantar Mantars across the country. Himanshu, of course, is with me on this story. Himanshu, Cockroach Janata Party ke jo leaders hain, ye keh rahe hain ki Jantar Mantar ko denotify to kar diya hai, lekin protest ko nahi rok payenge. क्या देख रहे हैं आप, सड़क, क्या सड़कों पे और प्रदर्शनकारी उतरते नजर आ रहे हैं? आर वी एक्सपेक्टिंग मोर प्रोटेस्ट टुडे? क्योंकि जंतर मंतर को में जब परमिशन नहीं दी जा रही है प्रोटेस्ट करने की, उसके खिलाफ आज दिल्ली हाईकोर्ट में एक सुनवाई है, लेकिन अगर आप देखें तो कोर्ट्स ने सीधे तौर पे कहा है कि अगर आप जंतर मंतर की बजाय कोई और प्रोटेस्ट साइट नोटिफाई करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या हमें सड़क पे इस वक्त और लोग नजर आने की उम्मीद है, क्या सीजेपी दोबारा से लोगों को सड़क पर आने का, जंतर मंतर पर आने का आह्वान दे रही है?
1: देखिए, अभी जो आशंका बनी हुई है वो इन पुलिस की तैयारियों को देख करके समझा जा सकता है अनिशा, कि आशंका तो है और इसीलिए पुलिस अभी सड़क पर मौजूद है, उसी तरीके से मौजूद है जैसे 10 अक्टूबर के दिन मौजूद थी। हाँ, उस दिन और आज में जो बेसिक डिफरेंस ये है कि उस दिन सड़कों पर बैरिकेड थी, सड़कों पर ट्रैफिक स्लो था, कई सड़कें बंद थी, लेकिन आज ट्रैफिक पूरी तरीके से खुला हुआ है। बैरिकेड हैं लेकिन सड़क के किनारे कर दिए गए हैं, जरूरत पड़ने पर उनको तुरंत किसी भी रोड को ब्लॉक करना हो वो इसलिए ये तैयारी कि अगर अचानक से कहीं से फ्लैश प्रोटेस्ट होता है, क्योंकि देखिए मेट्रो पूरी तरीके से खुली है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से खुली है, ये संसद मार्ग को पूरी तरीके से खोल दिया गया है, तो प्रदर्शनकारी कहीं भी कभी भी किसी भी तरफ से आ सकते हैं, ऐसी आशंका है। और खास तौर से उनके जो निशाने पे होगा वो जंतर मंतर और आसपास का इलाका होगा, तो इसलिए इन जगहों पर सिक्योरिटी बढ़ा के रखी गई है। अगर कभी भी प्रोटेस्टर्स यहाँ पर पहुंच रहे हैं, पहुंचते हैं, तो उनके लिए बसें भी तैयार हैं, सुरक्षाकर्मी फौरन उनको डिटेन कर रहे हैं और डिटेन करके उनको अनडिस्क्लोज लोकेशन पे ले जाया जा रहा है। उसके बाद जो लीगल एक्शन है उन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की तरफ से लिया जा रहा है। फिलहाल स्थिति पर अगर हम कहें तो नई दिल्ली इलाके में अभी ट्रैफिक सामान्य है लेकिन पुलिस सतर्क है। जी अनिशा
0: जी, हिमांशु, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट दिस फैक्ट दैट नई दिल्ली में आपने अभी जैसे कहा कि ट्रैफिक सामान्य है लेकिन पुलिस सतर्क है, इफ यू कैन टॉक टू अस अबाउट द काइंड ऑफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, किस तरह की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स रखी गई हैं? जैसा कि आप कह रहे हैं पुलिस का बंदोबस्त फिलहाल पूरा है, हालांकि आज अभी तक सीजेपी के या किसी भी ऑपोजिशन प्रोटेस्ट के आह्वान की कोई अभी तक खबर नहीं है, लेकिन कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि इतने दिनों से ये पूरा एरिया, ये पूरा प्रोटेस्ट पुलिस की बंदोबस्त को आप कवर कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि किस तरह से आज क्या कुछ होने की उम्मीद हो सकती है?
1: देखिए, पुलिस के बंदोबस्त को अगर हम देखें तो पुलिस के बंदोबस्त को लग रहा है कि उन्हें आशंका है, क्योंकि पुलिस की इंटेलिजेंस विंग भी काम करती है, उन्हें कहीं ना कहीं आशंका होगी। और जिस तरीके से नेताओं के, चाहे सीजेपी या लेफ्ट यूनियन के जो नेता हैं, जो लेफ्ट यूनियन के
0: प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज स्पीकिंग एट एन इवेंट, लेट्स लिसन इनटू व्हाट ही इज सेइंग।
3: भारत के प्रति उनका प्रेम, वैश्विक मंचों पर भारत के प्रति उनकी भावनाएं हमेशा बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा देने वाली रही है, और इसके लिए मैं श्रीमान आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हर साल यह फोरम दुनिया के बेहतरीन माइंड्स को एक साथ लाता है, यहां इकोनॉमी पर चर्चा होती है, टेक्नोलॉजी, एनर्जी और ग्लोबल अफेयर्स पर विमर्श होता है, और इस बार पहली बार यह आयोजन भारत में हो रहा है। मैं मिस्टर ब्लूमबर्ग और उनकी पूरी टीम को इस निर्णय के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने सही समय पर सही जगह चुना है। फ्रेंड्स, इस साल ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक फोरम की थीम दुनिया में उभरती नई पावर्स पर केंद्रित है। हर युग में पावर के अपने स्रोत रहे हैं, अपनी परिभाषा रही है, लेकिन 21वीं सदी में, खासकर तीसरे दशक में एक बड़ा बदलाव हो रहा है। टुडे टेक्नोलॉजी इज पावर, डेटा इज पावर, नॉलेज इज पावर, इनोवेशन इज पावर। लेकिन साथियों, असली सवाल यह नहीं है कि पावर किसके पास है, बल्कि सवाल यह है कि इसका यूज कैसे हो रहा है। क्या टेक्नोलॉजी सिर्फ कुछ लोगों को आगे बढ़ाएगी या करोड़ों लोगों के लिए नए अवसर बनाएगी? क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है, और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड। और इसलिए आज मैं यहां जिस विजन के साथ आया हूं वो है पावर टू एम्पावर। साथियों, यह विचार भारत के लिए नया नहीं है। हमारे यहां कहा गया है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसका भाव यही है कि ज्ञान, धन और शक्ति जिसके पास भी हो वो इनको यूज कैसे करता है, ये महत्वपूर्ण है। यानी पावर का असली मूल्य उसके पर्पज में है, और इसी सोच को आज के दौर में समझना बहुत जरूरी है। साथियों, पावर टू एम्पावर करने वाला जो ये मानवीय भाव है, ये सिर्फ दूसरों को उपदेश देने के लिए नहीं है, ये हजारों वर्षों की हमारी परंपरा ने हमें सिखाया है। और भारत में हमने इसे अपनी गवर्नेंस में, अपनी कार्य संस्कृति में लागू करके दिखाया है। इसलिए मैं भारत के उदाहरणों से ही अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। साथियों, आप सभी जानते हैं भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत में 100 से ऊपर भाषाएं हैं, करीब 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस हैं, 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं, और इतना ही नहीं, सोशल मीडिया के इस दौर में भारत में 500 मिलियन से अधिक यूट्यूब यूजर्स हैं, 500 मिलियन से ज्यादा इंस्टाग्राम यूजर्स हैं। हमारे यहां अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है, अलग अलग दृष्टिकोण पर जनता चर्चा करती है, और वर्तमान समय में इसमें जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है वो है डिजिटल पावर। साथियों, 12-13 साल पहले तक भारत में एक समय वो भी था जब मोबाइल और इंटरनेट तक पहुंच भी अपने आप में एक शक्ति हुआ करती थी। जिसके पास एक्सेस था उसके पास इंफॉर्मेशन थी, नॉलेज थी, अपॉर्चुनिटीज थी। 2014 के बाद जब भारत में नई सरकार बनी, हमें सेवा करने का अवसर मिला, तो भारत ने मोबाइल डेटा को एफोर्डेबल बनाने पर जोर दिया। इसी का नतीजा है कि आज एक छोटे शहर का विद्यार्थी भी डिजिटल लर्निंग से जुड़ सकता है, किसी गांव में एक छोटा दुकानदार भी नए कस्टमर्स तक पहुंच सकता है, एक युवा भी ऑनलाइन नए कोर्सेज ज्वाइन कर सकता है। यानी भारत में कनेक्टिविटी ने सिर्फ लोगों को कनेक्ट नहीं किया, उसने अपॉर्चुनिटीज को भी कनेक्ट किया है। यही पावर टू एम्पावर है। साथियों, आप में से जो अतिथि विदेश से आए हैं, उन्हें मैं कहूंगा कि आप भारत के डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम को भी आजमा कर देखिए। हमारे यहां एक स्ट्रीट वेंडर और एक बड़े कार शोरूम का कारोबार अलग अलग है, उनका स्केल अलग है, लेकिन भारत में ये दोनों डिजिटल पेमेंट्स के एक ही इकोसिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी की ताकत है। साथियों, भारत का जो भी सामर्थ्य है उसे हम अपने घर में ही रखने के समर्थक नहीं है, उसे हम ग्लोबल साउथ के साथ, अन्य पार्टनर कंट्रीज के साथ निरंतर साझा करते हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुभव को हम दूसरे देशों से शेयर कर रहे हैं, ताकि वे अपनी जरूरतों के अनुसार अपने डिजिटल सिस्टम्स विकसित कर सके। हमने कोविड के समय भी कोविन प्लेटफॉर्म बनाया था, जो ओपन सोर्स था। यानी हमारे ये निरंतर प्रयास है कि भारत की कैपेबिलिटी दूसरे देश के लिए भी पॉसिबिलिटीज के नए दरवाजे खोले। यानी हमारा सामर्थ्य मानवता को एम्पावर करें। साथियों, इनोवेशन की पावर भी ऐसी ही है। एक आइडिया को प्रोडक्ट में बदलना, एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदलना, यह अपने आप में एक बड़ी क्षमता है। लेकिन जब यह अवसर समाज के अधिक से अधिक लोगों को मिलता है, तो शक्ति का संतुलन बनता है और इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। भारत की स्टार्टअप जर्नी इसी बदलाव का उदाहरण है। वर्ष 2014 से पहले भारत में कुछ 100 स्टार्टअप ही हुआ करते थे, अब देश में इनकी संख्या 2.5 लाख से अधिक हो गई है। करीब आधे स्टार्टअप छोटे शहरों और कस्बों से आते हैं। 45% से अधिक स्टार्टअप से कम एक महिला डायरेक्टर या पार्टनर है। यानी इनोवेशन के अवसर अधिक लोगों तक पहुंच रहे हैं, नई प्रतिभाएं सामने आ रही हैं, नए सॉल्यूशंस बन रहे हैं। साथियों, पावर के पर्पज पर जो फोकस है, यही सोच गवर्नेंस में भी जरूरी है। सरकार के पास अथॉरिटी है, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि देश का नागरिक सिस्टम पर ही निर्भर हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि देश के नागरिक सक्षम हो, सशक्त हो और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते एक दशक में 25 करोड़ लोगों को दुनिया के कई देशों की आबादी से भी ज्यादा 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। साथियों, आपने जेम ट्रिनिटी और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बारे में भी सुना होगा। हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमने बेनिफिशियरीज के बैंक अकाउंट तक सरकारी मदद सीधे पहुंचाने की व्यवस्था बनाई है। इससे करप्शन कम हुआ है, देश के नागरिक की सुविधा बढ़ी है, गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच सीधा रास्ता बना है। साथियों, पावर टू एम्पावर की यही सोच भारत की ग्लोबल एंगेजमेंट में भी दिखाई देती है। कोविड महामारी के दौरान वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का बहुत बड़ा महत्व था। तब सवाल था कि क्या इस ताकत का फायदा भी कुछ ही देशों तक सीमित रह जाएगा, या फिर जिनके पास ये सुविधा और ये सामर्थ्य नहीं है उन देशों उन लोगों तक भी वैक्सीन पहुंचेगी। भारत ने मानवता को एम्पावर करने वाला रास्ता चुना। हमने 100 से अधिक देशों को वैक्सीन की सप्लाई की। हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी दूसरे देशों के लिए भी सहायता का माध्यम बनी। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूंगा। कुछ महीने पहले भारत में एआई इंपैक्ट समिट हुई और श्रीमान ब्लूमबर्ग जी ने भी उस एआई समिट की अभी बहुत तारीफ भी की है। इसमें हमने ह्यूमैनिटी के लिए एआई के उपयोग के साथ ही एनिमल्स को कैसे एआई का फायदा हो इससे भी चर्चा का विषय बनाया। नंदन यहां बैठे हैं, आपको बाद में काफी जानकारी वो दे सकती हैं ये कैसे किया। यानी भारत जितना सक्षम होगा मानवता के लिए दुनिया के लिए उतना ही फायदेमंद होगा। फ्रेंड्स, पावर इज नॉट जस्ट एबिलिटी टू मूव अहेड, इट इज ऑल्सो द एबिलिटी टू एम्पावर अदर्स टू मूव अहेड। भारत का मानना है कंपटीशन जरूरी है लेकिन कंपेशन भी होना चाहिए। इनोवेशन जरूरी है लेकिन उसके लाभ का विस्तार भी होना चाहिए। नेशनल स्ट्रेंथ जरूरी है लेकिन ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना होगा। क्लाइमेट चेंज हो, वाटर गवर्नेंस हो, पब्लिक हेल्थ हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो, दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे, नए अवसर पैदा करें। साथियों, मैं आप सभी को एक और उदाहरण देता हूं। पेरिस एग्रीमेंट के तहत क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए भारत ने एक बड़ा कमिटमेंट किया था। साल 2015 में हमने लक्ष्य रखा था कि 2030 तक अपने इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी का 40% नॉन फोसिल सोर्सेज से हासिल करेंगे और भारत ने यह उपलब्धि नवंबर 2021 में ही हासिल कर ली। यानी तय समय से 9 साल पहले भारत ऐसा करने वाला पहला G20 देश बना। यह केवल एक कमिटमेंट पूरा करने की बात नहीं थी, यह भारत की बदलती हुई एनर्जी जर्नी का भी संकेत था। साथियों, 2014 में भारत की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी करीब 75 गीगावाट थी, आज ये करीब 300 गीगावाट हो चुकी है, यानी हमने लगभग 4 times ज्यादा कैपेसिटी ऐड की है। साथियों, भारत में हो रहे इस एनर्जी ट्रांजिशन के नए अवसर भी बन रहे हैं। आज हमारे यहां पीएम सूर्यघर और पीएम कुसुम जैसी स्कीम्स चल रही है। एक योजना घरों को सोलर पावर से जोड़ रही है, दूसरी योजना किसानों को सोलर एनर्जी पैदा करने और उसके यूज से इनपुट कॉस्ट कम करने का सामर्थ्य दे रही है। इन दोनों योजनाओं के माध्यम से भारत को 30 गीगावाट से अधिक सोलर कैपेसिटी हासिल हुई है। इनसे हर साल करीब 30 मिलियन टन से अधिक कार्बन एमिशन कम होने का अनुमान है, यानी सोलर पावर प्रकृति की रक्षा करने का माध्यम भी बन रहा है और लोगों को एम्पावर भी कर रहा है। साथियों, दुनिया में पावर की इस भागदौड़ में भारत एक अलग मिजाज लेकर चल रहा है और उसका गवाह ये दशक भी है। साथियों, 21st century का ये डिकेड अभूतपूर्व ग्लोबल चैलेंजेस लेकर आया है। हम अगर पिछले 6 वर्षों को देखें, हमने ग्लोबल पैंडेमिक देखी, फिर अलग अलग रीजन्स में युद्ध छिड़ गए, जैसे इतना ही काफी नहीं था, फिर ट्रेड हो, क्रिटिकल मिनरल्स हो या एनर्जी सप्लाई हो, उसमें भी अड़चनें आ रही हैं। दुनिया एक संकट से बाहर निकलने का रास्ता तलाशती है, तब तक एक नया संकट सामने आ जाता है। जिन चीजों ने कभी दुनिया को जोड़ा था, वही आज वेपन बन रहे हैं। सप्लाई चेन्स हो, एनर्जी हो, मिनरल्स हो, पेमेंट्स हो या टेक्नोलॉजी, ये दबाव और दबदबे का माध्यम बन रहे हैं। बीते दशकों में ग्लोबलाइजेशन ने जो रूट्स बनाए, वो कब और कहां चौक पॉइंट्स बन गए, ये हम सब देख रहे हैं। इन सब के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर सेक्टर में काम करने के तरीके बदल रही है। अनेक देशों में एजिंग से जुड़े चैलेंजेस भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में आज दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल ट्रस्ट का है, भरोसे का है। भरोसा ये कि जरूरत के समय सप्लाई जारी रहेगी, भरोसा ये कि जो प्रॉमिस किए हैं वो निभाए भी जाएंगे, भरोसा ये कि संकट के समय हमारा पार्टनर कंट्री साथ खड़ा रहेगा। और यहीं पर भारत एक अलग मिजाज, एक अलग सोच के साथ आपके सामने है। साथियों, 21st century में भारत की प्रगति सबके साथ मिलकर, सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की कहानी है। जब दुनिया को अफोर्डेबल मेडिसिन की जरूरत होती है, तो हर 5 में से 1 जेनरिक मेडिसिन भारत से आती है। जब डिजिटल आइडेंटिटी और पेमेंट के सॉल्यूशन चाहिए तो भारत में विकसित मॉडल दिखता है। जब दुनिया को टैलेंट की जरूरत होती है तो भारत के स्किल युवाओं पर भरोसा होता है। आज भारत में 2000 से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं जो दुनिया भर की कंपनीज को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। साथियों, ये स्पष्ट है कि जब भी दुनिया को एक स्टेडी पिलर की जरूरत होती है तो भारत अपना दायित्व समझते हुए हाथ आगे बढ़ाता है। वी डू नॉट ग्रो एट एनीवन्स कॉस्ट, वी ग्रो विद द वर्ल्ड एंड फॉर द वर्ल्ड। और साथियों, भारत जो करता है उसका क्रेडिट भी नहीं चाहता। दुनिया गर्व से कहती है कि भारत ने दुनिया को जीरो दिया। इस जीरो ने पूरी मानवता का लाभ किया, लेकिन भारत ने इसके लिए कभी भी रॉयल्टी नहीं मांगी है। और आज भी भारत इसी भावना के साथ काम करता है। और आज की चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे जो विचार हैं उनमें भी वो सारी बातें दिखती हैं।

लेकिन भारत ने किस तरह के ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स बनाए आप भी गौर कीजिए। हमने कैसी कैसी संस्थाओं को जन्म दिया और दुनिया में क्या क्या हुआ है उसका जरा एक बार तुलना करके देख लेना। हमने क्या दिया? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। हमने क्या दिया? कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। हमने क्या दिया? बिग कैट अलायंस, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आईमैक, मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। यानी जिनसे सबका भला हो, हर जीवन का भला हो, ऐसे इनिशिएटिव भारत ने लिए हैं। साथियों, भारत किन विचारों को लेकर सामने आया है ये भी आपके सामने है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का विजन, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यह हमारी सोच। वन अर्थ वन हेल्थ, यह हमारी दूरदृष्टि। यानी भारत जोड़ने पर और जुड़ने पर बल देता है और इसमें भी पावर का इस्तेमाल दूसरों को एम्पावर करने के लिए ही है। साथियों, अनिश्चितताओं से भरी इस दुनिया में भारत रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी का विश्वास देता है। इस साल अप्रैल जून क्वार्टर में भारत की ग्रोथ रेट 7.8% रही है और यह ग्रोथ मजबूत नींव पर खड़ी है। 12-13 साल पहले भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी के 4% से भी अधिक था। पिछले साल यह घटकर लगभग 0.5% यानी 0.61% रह गया है। आज हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $700 बिलियन से अधिक है। हमारा बैंकिंग सिस्टम अनेक देशों में सबसे मजबूत स्थिति में है। साथियों, इसी मजबूती का परिणाम है कि भारत की सॉवरेन रेटिंग्स अपग्रेड की जा रही है। आज भारत का कॉन्फिडेंस अभूतपूर्व ऊंचाई पर है। हमें क्लियर पॉलिसी डायरेक्शन के साथ रिफॉर्म कर रहे हैं। जीएसटी के जरिए हमने टैक्सेस के एक कॉम्प्लेक्स वेब को नेशनल मार्केट में बदला है। हमने इंसॉल्वेंसी लॉ बनाया है। 29 लेबर कोड्स अब 4 सिंपल कोड्स में सिमट चुके हैं। बिजनेस से जुड़े सैकड़ों छोटी मोटी गलतियों को डिक्रिमिनलाइज किया गया है। और हम यहां रुके नहीं हैं। भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है। हमारे लिए रिफॉर्म्स कोई कंपल्शन नहीं है, रिफॉर्म्स हमारा कन्विक्शन है। साथियों, हजारों वर्ष पहले हमारे वेदों ने हमें एक मंत्र दिया था, संगच्छद्वम संवदद्वम संबो मनासी जानता। आइए आज फिर उस मंत्र को दोहराएं। लेट अस वॉक टुगेदर, लेट अस स्पीक टुगेदर, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वन अनदर। क्योंकि साथ चलने से हमारी शक्ति बढ़ती है, संवाद से हमारी समझ बढ़ती है और एक दूसरे को समझने से हम मिलकर बड़ी चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं। यही है पावर टू एम्पावर। अपनी पावर को केवल अपनी प्रगति तक सीमित न रखना,

बल्कि उससे दूसरों के लिए भी नए अवसर बनाएगा। मुझे विश्वास है कि ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक फोरम का यही मंच इसी भावना को आगे बढ़ना का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा। एक बार फिर आप सभी पार्टिसिपेंट्स को इस कार्यक्रम के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।

0: यार लोन भूल गया मैरी.
1: इट्स
0: जस्ट अ गुड बैंक ना.
2: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक.
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक.
2: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन.
3: There's nothing small about
4: us. Oh, Jeevan, nothing small about us.

0: अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: एक जूनियर पार्टनर और परजीवी पार्टी बनकर रह गई है कांग्रेस। मित्रों, कांग्रेस कुर्सी के लिए अब संवैधानिक संस्थाओं पर हमले कर रही है। वो जनता का दिल नहीं जीत सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो देश की जनता के दिलों पर राज करते हैं, और इसलिए जब वो कहते हैं विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ चलाते हुए, जब वो देश से आह्वान करते हैं वी विल डू इट, तो पूरा देश कहता है वी विल डू इट। और इसलिए परेशान कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करके, सड़कों पर अराजकता और दंगे फैला के, झूठ बोलकर गुमराह करके, अब कुर्सी चाहती, सत्ता में वापसी चाहती। कांग्रेस की हालत यह कि कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में नहीं आता तो कोर्ट पर हमले करती है, चुनाव हारती तो चुनाव आयोग पर हमले करती है, आतंकवादियों को जब सेना ठोकती है तो सेना पर हमले करती है। भारत की प्रगति और 140 करोड़ देशवासियों के भरोसे को पचा पाना कांग्रेस के लिए असंभव हो गया है।

0: उनके साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: यू
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: आप महामहिम राष्ट्रपति जी के पास गए, वहां पर भी आपको कहा गया कि शिकायत के साथ सबूत दीजिए, तो आप बगले झांकने लगे, भाग गए, चुप्पी साध ली। और सुप्रीम कोर्ट ने तो श्रीमान राहुल गांधी जी से साफ साफ कह दिया कि कोर्ट को आप अपनी राजनीति का रणक्षेत्र नहीं बना सकते। इनका फंडा बहुत क्लियर है, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का, राज नहीं तो अराजकता फैला दो। राहुल गांधी जी कहने के लिए तो नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन एक ऐसे नेता हैं जिनको न तथ्यों का पता है, न तर्क का पता है, न नियम कायदे कानून का पता है। उन्हें तो बस इतना पता है कि अराजकता फैलानी कैसे है, अस्थिरता लानी कैसे है, संवैधानिक पदों को और संस्थाओं को नीचे दिखाना कैसे है, और दुनिया भर में भारत का नाम बदनाम कैसे करना है, छवि को कमजोर कैसे करना है। यह दुर्भाग्य है देश को कभी इतना अस्थिर, अराजक, अगंभीर नेता प्रतिपक्ष के तमाशे और नखरे नहीं देखने पड़े।

0: न्यू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: न्यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: हर बार वही गोल्ड ज्वेलरी कैसे पहन सकती हूँ? पर इस जमाने में नई नई गोल्ड ज्वेलरी खरीदना भी तो इम्प्रैक्टिकल है। तो फिर सेनको का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज।
1: एंजॉय करें 0% डिडक्शन किसी भी ज्वेलर के गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज पर और खरीदें अपने पसंदीदा सेनको गहने।

0: आपने सुना होगा LPA, LPA एक लाइपोप्रोटीन है, एक ब्लड में मेजर होता है। अब वो LPA देखा गया है कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। पहले सोचते थे कि अगर फैमिली में चल रहा है तो शायद एक मार्कर है जिससे पता चल जाता है कि शायद हार्ट डिजीज ज्यादा होगी। अब ये एक मार्कर, ये अब ये रिस्क फैक्टर है। और हमारे हिंदुस्तान में या साउथ ईस्ट एशिया में ये वेस्ट से ज्यादा पाया जाता है। तो दिस इज अगेन जेनेटिक्स। हमारे लोगों में LPA बहुत हाई है। अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में ये पॉपुलेशन बेस्ड स्टडीज नहीं हुई है, बट एटलीस्ट ग्रुप्स में देखा गया है और दूसरे कंट्रीज की पॉपुलेशन बेस्ड स्टडीज में देखा गया कि हिंदुस्तान में LPA ज्यादा होता है। और ये LPA सिर्फ अगर वेस्ट में LPA हाई हो तो अगर हम कहेंगे कि डेढ़ गुना रिस्क फैक्टर ज्यादा बढ़ गया, बट हिंदुस्तानी में ये भी देखा गया कि LPA सेम लेवल का LPA हाई हो तो हिंदुस्तानी में तीन गुना ज्यादा हार्ट डिजीज हो जाता
1: है।
0: सो वी आर सफरिंग फ्रॉम टू साइड्स ऑफ जेनेटिक्स। सो फिर वो जो बात आई कि और क्या चीजें हैं हिंदुस्तानियों में, तो वो तो क्लियर है, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ हाइपरटेंशन। 30% एडल्ट्स अबव द एज ऑफ 30 हाई ब्लड प्रेशर से सफर कर रहे हैं। और मैंने कह ही दिया कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो हमारे बड़े में है, स्पेशली लो HDL कोलेस्ट्रॉल और रेस्ट ट्राइग्लिसराइड्स। तो एक्चुअली यही है हमारा जीन्स और यही है हमारी किस्मत। सो एक एक हिंदुस्तानी एक लोडेड गन है जिसको हम कहेंगे कि अगर ट्रिगर दबा तो हार्ट अटैक हुआ, अनफॉर्चुनेटली।

0: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है। ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
1: ये है एक लेगेसी।
2: यू नो डिजाइंस कितने हैं? लाख से भी ज्यादा डोर
3: और सारे हैं BIS हॉलमार्क सर्टिफाइड। खूबसूरत कारीगरी भी, हाई क्वालिटी भी।
4: एक परिवार अटूट भरोसा।
5: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
6: सोच बदलो और बैंक भी।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: यार लोन भूल गया मैरी
1: इट्स
0: जस्ट अ गुड बैंक ना
2: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
2: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन्ड कार लोन टू व्हीलर लोन
3: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
4: अस उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस

0: Welcome back. So the India bloc leaders have submitted a petition in the Supreme Court. The plea questions mass voter deletions under the SIR process and the functioning of the Election Commission. Now, in this plea, the opposition leaders have named the CEC, Gyanesh Kumar, and the two election commissioners as respondents. But the petition has not been listed for hearing today after the Supreme Court registry flagged 14 defects in the filing. The objections include the questions over naming individual election commissioners as respondents, the pending submission of a legible copy of the Congress Chief Mallikarjun Khadge's identity card, and the registry has also flagged missing or unsigned affidavits for 9 petitioners and a court fee shortfall of 220 rupees. Earlier, Rahul Gandhi had expressed thanks to the protesters, asserting that the opposition would not back down and that the people of India would not be intimidated. He said those who defended democracy would be proud of their actions and called the Prime Minister and RSS as bullies. The LOP of Lok Sabha has also invited not just India bloc MPs, but also civil society leaders and otherwise to address together a press conference at 4 p.m. The BJP, meanwhile, has branded Rahul Gandhi a Hawa Hawai Neta, accusing him of targeting institutions whenever Congress loses elections or it suits Rahul Gandhi. The BJP has accused the opposition of wanting to spread anarchy and law and order across the country.
1: I'd like to thank every single person who came out for this protest. I'd also like to thank the millions of people who showed support in their own way at 3 o'clock. The leaders of India Bloc, all the workers of the Congress Party, workers of the India Bloc, this was a very important thing because we needed to show the government that the people of India are not going to be intimidated. You cannot beat us, you cannot threaten us, you cannot frighten us. We will not accept being bullied. I'd like to thank every single person who came out for this protest. I'd also like to thank the millions of people who showed support in their own way at 3 o'clock. The leaders of India Bloc, all the workers of the Congress Party, workers of the India Bloc, this was a very important thing because we needed to show the government that the people of India are not going to be intimidated. You cannot beat us, you cannot threaten us, you cannot frighten us. We will not accept being bullied. I was wondering when I was on the bus there, where the cowards of the RSS who were beating the young children day before yesterday were. Where were those people? Because I didn't see them. When we are standing there, and when the people of India are standing there, why don't you come out? Why don't you wear your little scarves and come out and see what happens? Because you're essentially like the Prime Minister of India, bullies. You cannot stand up. You can only use power to fight. So it's very heartening to see what happened. I'm proud of everybody. Everybody worked like a team. As I said in my press conference, there are no parallel protests. There is one protest, and it's a protest where everybody is standing together. Every single person is going to stand against these killers of our constitution, these killers of our democracy, and we're not going to back down. I'd also like to thank everybody from civil society organizations who came, supported us. We value your support, and we love all of you. Thank you, thank you, thank you for coming out and defending the idea of India, the idea of the Constitution, the idea of our democracy. I'm extremely proud of every single person who came out on the streets. Thank you.
2: कल की भीड़ देख के दिमाग उनका परेशान है, दुखी. उन्हें उम्मीद नहीं थी शायद कि पूरे देश से इतने लोग चलकर आ जाएंगे. मैं इतने कहना चाहता हूं कि हमें अपने नेता पर गर्व है. वो जिस तरीके से उनका नेतृत्व का गुण दिखा है, उससे विचलित है भारतीय जनता पार्टी. वो पहले मानसिक स्थिति जाके देखें अपने सर्वोच्च नेता और उन दो की, जो इस समय बिल्कुल मानसिक रूप से असंतुलित होकर असंतुलित कदम उठा रहे हैं.
3: ये तो पहले भी न्यायालय के जो निर्णय हुए थे उसी के आधार पर कार्रवाई हुई है. एसआईआर कोई पहली प्रक्रिया नहीं है. एसआईआर जो है ये लगातार चुनाव आयोग की चलने वाली प्रक्रिया है जिसको पूरे गाइडलाइन के साथ किया जाता है। और जब ये पिछला लोकसभा का चुनाव हारे थे तब के इनके स्टेटमेंट उठा के देखो, तब तो कह रहे थे कि गलत नाम है, डिलीट किए जाए डिलीट किए जाए। अब जब वोटर लिस्ट क्लियर हो रही है तो भी इनको दिक्कत है, तो मुझे लगता है कि इनको दिक्कत है, बाकी किसी को कोई दिक्कत नहीं।
4: कांग्रेस पार्टी आज एक कॉर्पोरेट की तरह, कांग्रेस पार्टी आज से नहीं बरसों से है, तो खड़गे जी उसके एक MD हैं, तो जितने लोग थे उन्होंने कह दिया चलो आज केस दायर करना है, तो न हड़बड़ी में सारे लोग कर लेंगे, खामियां ही खामियां, क्योंकि आज तक उन्होंने सबूत पेश नहीं कर पाए। राहुल गांधी ये मान लिए हैं कि नरेंद्र मोदी के रहते हम सत्ता में नहीं आ सकते, 99 चुनाव तो हार चुके।
5: मैं आज राहुल गांधी को चैलेंज देना चाहता हूं कि पहले अपना ज्ञानेश कुमार का समय जितना आपका सरकार बने पहले सबको आप रिजाइन देने बोलो, केरला में केरला का सरकार को रिजाइन देने बोलो, आप झारखंड में रिजाइन देने बोलो, आप कर्नाटक में रिजाइन देने बोलो, आप तेलंगाना में रिजाइन देने बोलो, और आप तमिलनाडु में आपका अलायंस सरकार को रिजाइन देने बोलो, और आप अनाउंस भी करो कि अगर ज्ञानेश कुमार CEC रहेगा तो अगले उत्तर प्रदेश चुनाव में नहीं लड़ूंगा।
0: More protesters are being detained at the Jantar Mantar, complete high drama breaking out, no permission that was granted, and yet NSUI staging a protest nevertheless. Let's go across to this ground report coming in from my colleague Amit Bhardwaj at Jantar Mantar.
6: थावक सदस्य वो पहुंचे थे और अब ये प्रदर्शनकारी अचानक से CP में फ्लैश प्रोटेस्ट करने के लिए आते हैं और उनको अब दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया है। ये जनपद की सड़क है जो जंतर मंतर की तरफ जाती है, उसी सड़क पे प्रदर्शनकारी 40 से 50 प्रदर्शनकारी आप कह सकते हैं एक तरह से पहुंचे थे, उनको एक एक करके पुलिस ने उठाया और बस के अंदर डिटेन करके ले गए हैं। सुबह से कई बार इस तरह से फ्लैश प्रोटेस्ट करने की कॉल छात्र संगठनों द्वारा दी जा रही है, उनका कहना है कि जंतर मंतर जिस तरह से पहले डेजिग्नेटेड स्पॉट ऑफ प्रोटेस्ट था उसको रीइंस्टेट करना चाहिए, हम CC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहते हैं और जंतर मंतर में ही करना चाहते हैं, ये छात्र संगठन कह रहे हैं। खासतौर पर जो लेफ्ट संगठन है छात्रों के, उनकी तरफ से कहा जा रहा है, एक बार तस्वीर देखिए, ये जो सड़क है बिल्कुल सीधे आपको जनपद से ले जाती है, वहां पे हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट आपको दिखाई देगी। उसका कारण ये है कि फ्लैश प्रोटेस्ट यहाँ पे शुरू हुआ, फ्लैश प्रोटेस्ट यानी कि अचानक से युवा प्रदर्शनकारी यहाँ पहुंचे, उन्होंने नारेबाजी की, हाथ में पोस्टर बैनर लेकर वो पहुंचे थे, अब वो तमाम पोस्टर बैनर सड़कों पे गिरे हुए हैं। ये दिशा छात्र संगठन है संभवतः जो प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे पहुंचे थे, उनको यहाँ से हटा लिया गया है, अब उनको यहाँ से हटाया गया है, इसकी वजह से सड़क बाधित है इसकी वजह से, और प्रदर्शन के हुए हैं वो अपना जो प्रोटेस्ट मार्च है CP से निकालना चाहते थे, पर वही मैं दिखाना चाहूंगा कि पुलिस एक्शन और जो पैरामिलिट्री का जो एक्शन है यहाँ पर शुरू हो गया है, जो NSY के कार्यकर्ता है उनको डिटेन करना दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री के जवानों ने यहाँ पर शुरू कर दिया, क्योंकि प्रोटेस्ट को देखते हुए पिछले एक हफ्ते से देखा जा रहा है कि CP के अंदर भारी तैनाती जो है की गई है पुलिसकर्मियों। क्या मांगे आप?
7: देखिए हमारी मांग है कि जो वोट चोर ज्ञानेश कुमार और EVM से बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दें, क्योंकि उन्हें पद में रहने का कोई अधिकार नहीं, उन्हें वोट चोरी करके देश के प्रधानमंत्री बने और ये वोट चोर सहयोग करने वाला ज्ञानेश कुमार इसका जब तक इस्तीफा नहीं होता जब तक हमारी लड़ाई है।
6: तो अंजलि SIR के मुद्दे को लेकर जो NSY का फ्लैश प्रोटेस्ट है, तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि CP के इनर सर्कल A ब्लॉक के पास की आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां कैसे आप देख सकते हैं हाथ में झंडे लेके जो कांग्रेस पार्टी है अपना विरोध प्रदर्शन कर कर रही है, जो NSY के लोग हैं अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है। तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो NSY के कार्यकर्ता अंजलि यहां पर बैठ चुके हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर वो जो अपना सिटिंग प्रोटेस्ट है वो करें, पर तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि जो महिला प्रदर्शनकारी हैं उनको भी यहां पर डिटेन करना शुरू कर दिया। देखिए तस्वीरों में जो NSY के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको भी यहां से डिटेन कर लिया। आप देख सकते हैं पीछे तस्वीरों में कैसे यहां पर दिल्ली पुलिस पहले ही बसेस लाकर यहां पर पहले ही रखी गई थी ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं उनको डिटेन किया जा सके। भारी संख्या में आपको दिल्ली पुलिस की जो महिला कर्मचारी हैं, महिला कांस्टेबल्स हैं यहां पर नजर आएंगे, साथ ही पैरामिलिट्री के जो जवान हैं, CRP के जवान आपको अंजलि यहां पर नजर आएंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दिल्ली का कनॉट प्लेस अब नया जंतर मंतर बनता दिख रहा है। लेफ्ट के लोग तो यहां पर धरना प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं, वही जो अब कांग्रेस पार्टी का छात्र संगठन है NSY उनके लोग भी यहां पर अपना जो फ्लैश प्रोटेस्ट है बुला रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा पीछे तस्वीरों में जो NSY के कार्यकर्ता थे उनको डिटेन करके यहां पर बस में भर लिया गया, और भी जो कार्यकर्ता है, मैं आपको अंजलि दूसरी तस्वीर दिखाना चाहूंगा, जो और भी कार्यकर्ता है जो अंदर थे इनर सर्कल कनॉट प्लेस की मार्केट की तरफ थे उनको भी अब जो बाहर ला लाकर डिटेन कर रही है दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो सिटिंग प्रोटेस्ट है NSY के कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस की छात्रा का ही है, उनका यहां पर शुरू हो चुका है। जो दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री है वो कोशिश कर रही है इनको उठाने की, हालांकि इनको अभी मौका दिया गया है, पर अभी भी अगर नहीं उठेंगे तो देखा जाएगा कि जल्द ही इन पर जो है दिल्ली पुलिस का जो एक्शन है वो शुरू हो जाएगा। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं कैसे कनॉट प्लेस जो दिल्ली का दिल है, दिल्ली का सबसे बड़ा बाजार है अंजलि, दिल्ली के सेंट्रल दिल्ली का सबसे बड़ा बाजार है, प्रदर्शनकारियों के लिए नया अड्डा बन चुका है। और पिछले 3 से 4 दिन से देखा जा रहा है कि जो प्रदर्शनकारी हैं, जो लेफ्ट की आईसा है, AISF है, SFI से जुड़े हुए जो लोग हैं यहां पर अपना प्रदर्शन कर रहे थे। और यहीं कैसे कल देखा गया कि 12 खंबा से कनॉट प्लेस से ही राहुल गांधी की जो सुप्रीम कोर्ट की यात्रा है वो शुरू होती है, उसी बीच कनॉट प्लेस की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो कुछ प्रदर्शनकारी थे उनको यहां से डिटेन कर लिया गया। और भारी संख्या में आप देख सकते हैं दोनों तरफ पैरामिलिट्री फोर्सेज के अंजलि आपको जवान नजर आएंगे, आप देख सकते हैं इस तरफ महिला आपको जवान नजर आएंगे, सबने बॉडी कैम जो है ज्यादातर महिला जवानों ने लगा रखे हैं ताकि कल उन पर अगर कोई आरोपबाजी होती है तो वो अपना जो है सबूत, अपना जो आर्ग्यूमेंट है वो रख सके। वही मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि फिर जो NSY के कार्यकर्ता है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर भारी संख्या में कैसे जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनको डिटेन।
4: 55 हरकत हम देख रहे हैं, उस विषय में कुछ आपके साथ जानकारियां साझा करना चाहता हूं, कुछ प्रश्न राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं। कांग्रेस इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता के ऊपर सवाल उठाती है, पर पूरी तरीके से नजरअंदाज करती है अपने खुद के काम को, अपने खुद के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो NDA की सरकार ने इलेक्शन कमीशन को स्वावलंबी तरीके से देशहित और जनहित में अपने काम करने के लिए पूरी तरीके से ऑटोनॉमी दी है, और कोई भी इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट हुआ हो उसको कोई राजनीतिक लाभ दिए कभी भी देने का प्रयास नहीं किया, उनको अब ईमानदारी से काम करने दिया और जो कानूनी प्रावधान है उसके हिसाब से उनको कोई राजनीतिक पद देने का कभी गुनाह नहीं किया। लेकिन राहुल गांधी जी की अगर ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, जिसको वो बड़ा कन्वीनियंटली नजरअंदाज कर देते हैं, तो उन्होंने एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पार्टी टिकट पे कैंडिडेट बनाया, एक को यूनियन कैबिनेट में लिया, 2 इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को गवर्नर बनाया, और एक बार तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कहने पे कि उनके नीचे काम करने वाला इलेक्शन कमिश्नर पूरी तरीके से कांग्रेस की एजेंट की तरह काम कर रहे हैं उसको निकालने से इनकार कर दिया। मैंने इतना पक्षपात हमने शायद ही कभी कोई सरकार में देखा हो जितना कांग्रेस ने अपने रवैये में दिखाया। आप शुरू में देखिए तो टीएन सेशन जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, कांग्रेस बड़ा उनका गुणगान गाते थे कि ईमानदारी की उनकी फियरलेसनेस पे, और उसके बाद क्या किया 1999 में श्री एल के अडवाणी जी के सामने उनको खड़ा रहने के लिए मौका दिया कांग्रेस के टिकट पे। अब अगर वो इतनी ईमानदारी व्यवस्था चलाते थे इलेक्शन कमिश्नर के रूप में, तो फिर एक पार्टी के कैंडिडेट वो भी इतने इंपॉर्टेंट इलेक्शन में क्या अडवाणी जी के खिलाफ खड़े करना, क्या ये एक प्रकार से उनको रिवॉर्ड करने का काम नहीं है? श्री एम एस गिल चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे 1996 से 2001 तक, 5 वर्ष के लिए, और मजेदार बात उनको पद्म विभूषण से नवाजा गया जब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उस वक्त, यानी 2000 में, सन 2000 में सिटिंग सीईसी को पद्म विभूषण देना क्या ये लालच नहीं है? क्या ये एक प्रकार से उनको रिश्वत देने का काम नहीं हुआ? और आप एक आप देखें तो ये सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है भारत का, ये उनकी चापलूसी कारनामों का एक प्रकार से रिवॉर्ड देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और फिर आगे चले तो 3 वर्ष रिटायरमेंट के बाद वो कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, राज्यसभा में आ जाते हैं 2004 में, और फिर 2008 में उनको केंद्रीय कैबिनेट में यूनियन मिनिस्टर बनाया जाता है। अब इससे ज्यादा आपको क्या प्रूफ चाहिए कि कांग्रेस ने इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस को कितने निचले स्तर पर गिरा दिया और कैसे मिसयूज किया इलेक्शन कमिश्नर्स को, और राजनीतिक रिवॉर्ड देके उनके जो सेवा थी कांग्रेस को उसको रिवॉर्ड किया। एक प्रकार से एम एस गिल जी का तो कभी सरकार में है, कभी इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं, कभी पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं, कभी यूनियन कैबिनेट में जाते हैं, ये कोई सौदेबाजी का भी प्रतीक लगता है। आर के त्रिवेदी जी को देखें, इनका चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर 31 दिसंबर 1985 में खत्म हुआ और 2 महीने के अंदर 26 फरवरी 1986 में राजीव गांधी जी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने इनको गुजरात का गवर्नर बना दिया। चौथा किस्सा देखें, 2005 में आप अखबार निकाल लीजिए, टीवी के क्लिपिंग्स देखिए, चीख चीख के उस समय की सरकार कह रही थी सोनिया गांधी जी ने नवीन चावला को इलेक्शन कमिश्नर बनाया। सोनिया गांधी जी कैसे बना सकती है, वो तो कोई सरकार में थी नहीं। उस समय तो व्यवस्था ये थी कि प्रधानमंत्री और सरकार नियुक्त करती थी इलेक्शन कमिश्नर को, तो सोनिया गांधी जी कब से तय करने लगी कि किसको क्या पद देना चाहिए, कौन चला रहा था सरकार तब। पांचवा किस्सा, 2009 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री एन गोपाल स्वामी जी ने नवीन चावला जी को निकाला जाए ऐसा अनुरोध किया सरकार की। उन्होंने कहा कि इनका कंडक्ट बड़ा एकतरफा है, पार्टीसन कंडक्ट है, फेवरेटिज्म का आरोप लगाया कि पक्षपात करते हैं कांग्रेस के फेवर में, पर कांग्रेस ने उस पर काम नहीं किया। उस समय की वर्तमान कांग्रेस की मनमोहन सिंह जी की सरकार, जो वैसे सोनिया गांधी जी चलाती थी, राहुल गांधी जी जिसका जिसकी कोई इज्जत नहीं करते थे, हमने वो तो सब किससे देखे ही है। गोपाल स्वामी जी के रिक्वेस्ट के बाद, उनकी रिकमेंडेशन के बाद नवीन चावला को निकालना तो छोड़ो, क्योंकि वो इतने लॉयल थे कांग्रेस पार्टी के प्रति, उनको जाके चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया। ये उनकी लॉयल्टी जो थी सोनिया गांधी जी के प्रति, कांग्रेस के प्रति, जो पार्शियलिटी से वो काम करते थे खुलेआम, उसका रिवॉर्ड उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया।
8: और देखिए कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर तक सीमित नहीं है। टीकाराम मीना केरल के चीफ इलेक्शन ऑफिसर थे, एक वर्ष के बाद उनको कांग्रेस के राजस्थान के मैनिफेस्टो टीम में ले लिया, कांग्रेस पार्टी का सदस्य बना दिया। दूसरा किस्सा तो और भी खराब है, हाल में मई 2026 का रतन यू केलकर केरला के चीफ इलेक्शन ऑफिसर थे, हाल की बात है, अभी जो केरल में चुनाव हुआ, चुनाव के तुरंत बाद एक महीने के भीतर वर्तमान में चीफ मिनिस्टर वर्तमान मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने उनको अपना सेक्रेटरी घोषित कर दिया मई 2026 में, चुनाव के तुरंत बाद। अब क्या ये कुछ राजनीतिक पुलाव नहीं सेका जा रहे है? क्या आप हमें हेल्प करो इलेक्शन में और हम आपको तुरंत पद

दुरुपयोग किया, पक्षपात करवाया और अंत में जाके उनको या तो कोई पद दिया, गवर्नर बनाया, यूनियन मिनिस्टर बनाया, पार्टी के अंदर ले लिया, इलेक्शन लड़वाया, पूरी तरीके से ध्वस्त किया इलेक्शन कमीशन के बिना कोई पक्ष को फेवर किए इम्पार्शियल वर्किंग को उन्होंने पूरी तरीके से ध्वस्त किया उनके कार्यकाल में। मित्रों, पहले तो इलेक्शन कमीशन कैसे अपॉइंट होते थे? कमिश्नर सरकार अपॉइंट करती थी, कोई उसमें सलाह मशवरा नहीं होता था, किसी प्रकार की किसी से बातचीत नहीं होती थी। जिसने सरकार को बना दिया वो इलेक्शन कमिश्नर बन गया, जिसे चाहा उसे चीफ बना दिया। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिसने 2023 में कानूनी प्रावधान किया, नया कानून लाए और उस कानून के तहत जो नेता प्रतिपक्ष है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, उनको भी सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बनाया और प्रधानमंत्री जी के साथ अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन साथ बैठ के चुनते हैं कि कौन इलेक्शन कमिश्नर बने, कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। मैं 10 प्रश्न आज राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, और मुझे लगता है राहुल गांधी जी के पास इन 10 प्रश्नों में से एक का भी जवाब नहीं होगा। जिस प्रकार का हमने व्यवहार उनका देखा, जिस प्रकार से वो शूट और स्कूट पॉलिसी के बेबुनियाद झूठे आरोप लगा के भाग जाने का काम करते हैं, उसको मद्देनजर रखते तो उनके पास एक का भी जवाब नहीं होगा। मैं चैलेंज करता हूं राहुल गांधी जी को कि आके इन 10 सवालों का जवाब दें। पहला, वो रोज वोट चोरी की बात करते हैं, रोज इलेक्शन कमीशन को बुरा भला बोलते हैं, बुरे बड़े शब्दों में उनका अपमान करते हैं, पर बार बार मांगने के बाद भी एक भी एफिडेविट उन्होंने फाइल नहीं किया इलेक्शन कमीशन में। कुछ प्रमाण दे, कुछ एविडेंस दे, जो वो क्लेम कर रहे हैं उसको ओथ पे क्लेम करके बोले तो सही, एक जिम्मेदारी तो दिखाएं अपनी झूठे आरोप लगाने के पहले। ये कावड़ की तरह जो उनका बिहेवियर है, एक डरपोक व्यक्ति ही ऐसे शूट करके भाग जाता है बजाय के जिम्मेदारी उठाने के अपने आरोपों की। अगर इतना सीरियस, दूसरा, अगर इतनी सीरियस प्रॉब्लम थी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR से, तो जब बिहार में हो रहा था तो चुप्पी क्यों मार साजी, तब क्यों नहीं आवाज उठाई? जब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में हो रहा था तब क्यों नहीं एक भी बार क्लेम फाइल किया इंक्लूजन के लिए या एक्सक्लूजन के लिए SIR के समय? कांग्रेस पार्टी ने, कहां थी कांग्रेस पार्टी उस समय? तीसरा, कांग्रेस के खुद के मंत्री, पूर्व मंत्री, कांग्रेस के खुद के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के खुद के वर्तमान में सांसद या MLA जैसे अभिषेक मनु संघवी जी आंध्र प्रदेश में, अशोक गहलोत, सचिन पायलट और CP जोशी जी राजस्थान में, रमेश चन्नीथाला जी केरल में, इन सब ने पब्लिकली ये कहा है, मीडिया के समक्ष ये कहा है कि लाखों नाम डुप्लीकेट है, ढेर सारे नाम निकालने की आवश्यकता है, इतने सारे लोग मर गए हैं, देहांत हो चुका है, पर उनके नाम अभी भी इलेक्टोरल लिस्ट में, और इससे संदेह आता है कि कोई मिसयूज कर सकता है, कोई गलत नाम के सामने जाके वोट डाल सकता है। इन सबको हटाना चाहिए। जब SIR ने यह काम किया तब कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। या तो कांग्रेस इन सब नेताओं को पार्टी से बहाल कर दे जो SIR मांग रहे थे, जो मांग रहे थे इलेक्ट्रल रोल को शुद्धिकरण किया जाए। आज इलेक्शन कमिश्नर जो SIR के माध्यम से

0: वर्षों से लंबित था, वर्षों से जो आवश्यकता थी कि जो लोग शिफ्ट हो गए, जिनके नाम डुप्लीकेट हैं, जिनका देहांत हो गया, उन सबको निकाल के एक शुद्ध लिस्ट बने, और हमने उसका लाभ देखा ही है। अब 90-90% इलेक्शन वोटिंग होती है, स्पष्ट दिखाते हैं कि ये लोग थे ही नहीं। चौथा सवाल, कांग्रेस के कई लीडर्स उन्हीं के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ अपनी बात रख रहे हैं। शशि थरूर जी ने तो स्वयं कहा कि SIR की वजह से कांग्रेस केरल में जीती, क्योंकि ये सब डुप्लीकेट नाम, मरे हुए लोगों के नाम, जो लोग वहां से शिफ्ट हो गए वो नाम निकल गए, तो कोई मैल प्रैक्टिस होने की संभावना नहीं थी केरल में। ये शशि थरूर जी का दावा है। रमेश चेन्नीथाला जी ने खुद कहा कि SIR की वजह से ही आज कांग्रेस जीत पाई है केरल में, और केरल के मुख्यमंत्री स्वयं श्री VD सतीशन जी ने SIR की तारीफ की है। अधीर रंजन चौधरी जी ने इलेक्शन कमीशन की तारीफ करी कि पश्चिम बंगाल के चुनाव उन्होंने अच्छी तरीके से लड़ाए, ईमानदार व्यवस्था से लड़े गए, और जो गलत काम ममता बैनर्जी जी करती थी उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने भी किया और इलेक्शन कमीशन की तारीफ की। अब उनकी खुद की पार्टी बेबुनियाद और झूठे वोट चोरी के दावे ला रही है, और जो ममता बैनर्जी को अपोज करते थे आज ममता बैनर्जी के साथ कंधे से कंधा मिला के अब इलेक्शन कमीशन की विरोध करने निकल उठे हैं। इनके दोहरे मापदंड बार बार देखने को मिलते हैं। पांचवा, अगर वास्तव में ये मानते हैं कि इलेक्शन रिग्ड है या इलेक्शन कमीशन ठीक से काम नहीं कर रही है या SIR ठीक नहीं है, तो इनकी चारों कांग्रेस सरकार कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल और केरल, और साथ में जो झारखंड और तमिलनाडु की सरकार में शामिल है, इसमें सत्ता का क्या है? उनको लोभ है। अगर वो सही माने में मानते हैं इलेक्शन कमीशन ने ईमानदार व्यवस्था नहीं रखी है, तो क्यों नहीं रिजाइन करते हैं इनके 6 के 6 मुख्यमंत्री? तुरंत रिजाइन करना चाहिए। और ये कई लोग ये बात रख रहे हैं कि कांग्रेस तय करे, ऐसा नहीं हो सकता है जहां जीते वहां तो सही काम हुआ, वहां इलेक्शन कमीशन ने पक्षपात नहीं किया, और जहां हारे वहां SIR को गाली देना। छठा, अगर ये सही माने में मानते हैं कि SIR रिग्ड है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जब वो जीत रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन का काम ठीक है, इलेक्शंस आर परफेक्ट, और जब हार रहे हैं तो इलेक्शंस आर रिग्ड। इसको आजकल एक लोग, युवा हमारे साथी बोलते हैं, डेलुलू इज द सोलुलू। ये माइंडसेट, ये जो मानसिकता है इनकी, इसको डेल्यूजन में रहने के वाले जो लोग हैं उनको ये डेल्यूजन में ही सोल्यूशन दिखता है। डेलुलू इज द सोलुलू, ये ऐसी मानसिकता है कांग्रेस की, और इसीलिए लोग इनको पसंद नहीं कर रहे, इसीलिए बार बार ये चुनाव हारते हैं, और झूठ बोल बोल के कभी जनता का आशीर्वाद नहीं प्राप्त करेंगे। झूठ झूठ बोल के ये कभी जनता का विश्वास नहीं प्राप्त कर सके, और इसीलिए कई लोग मानते हैं कि राहुल गांधी स्वयं सबसे बड़े रेड फ्लैग है, ही इज द बिगेस्ट रेड फ्लैग, जिसके कारण कांग्रेस बार बार हार रही है। कई युवा साथी बैड ओमेन को कहते हैं बिगेस्ट रेड फ्लैग, और वो राहुल गांधी कांग्रेस के लिए सबसे बड़े रेड फ्लैग है जिसके कारण कांग्रेस बार बार हार रही है। सातवां, कल का जो भद्दा व्यवहार था, और स्वयं राहुल गांधी और उनके साथियों ने जिस प्रकार से एक पत्रकार बहन के साथ दुर्व्यवहार किया, बहन 3 महीने प्रेग्नेंट थी, गर्भ से थी, बार बार कह रही थी कि संभल के मैं गर्भवती हूं, लेकिन जिस तरीके से उसका धक्कम धक्की की, जमीन पे फेंका, फिर उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, सिर्फ गुनाह क्या था कि उनका प्रोटेस्ट कवर कर रही थी, दो सवाल पूछ रही थी। ऐसा व्यवहार मैं नहीं मानता हूं देश के 140 करोड़ जनता कभी माफ करेगी। मैं नहीं मानता हूं एक भी पत्रकार भाई बहन इस व्यवहार को कभी माफ कर सकती है। आठवां सवाल, कभी ममता बनर्जी को गाली गलौज करते हैं, इलेक्शन में उनके विरोध लड़ते हैं, कहते हैं कि ममता बनर्जी ने द्वार खोल दिया बीजेपी को पश्चिम बंगाल जीतने का, उनके गलत कारनामों से, उनके मैल प्रैक्टिसेस से। और चुनाव के बाद जब दोनों हार जाते हैं तो क्या है, वो चोर चोर मुसेरे भाई, तो आप दोनों शेमलेसली बेशर्मी से यू टर्न करके अब एसआईआर को और इलेक्शन कमीशन को ब्लेम करने लग जाते हैं। अब सातवें एक कमरे में बैठ के एक ही टेबल पे ढूंढ रहे हैं दोनों कि हम हारने का कोई कारण ढूंढे, तो एसआईआर को ब्लेम कर दो, इलेक्शन कमीशन को दे दो। थोड़ी तो रीढ़ की हड्डी दिखाएं राहुल गांधी और ममता बनर्जी, कभी तो एक स्टोरी पे स्टिक करें बजाय के अपना नैरेटिव ही बार बार बदलने के। नाइन्थ सवाल, जब सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के एसआईआर का मई 2026 में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अपहोल्ड किया है, कहा ये संवैधानिक तौर पे ये सही हुआ है, जब फॉर्म 6 के ऊपर कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, तो अगर ये वास्तव में संविधान का सम्मान करते हैं तो फिर सड़कों पे क्यों उतरे? जुडिशियल प्रोसेस तो चल ही रहा है, कोर्ट देख रहा है कि फॉर्म 6 ठीक है, कुछ सुधार की आवश्यकता है तो कोर्ट बताएगी, और एसआईआर तो संवैधानिक तौर से ठीक है, बोल ही चुका है कोर्ट, तो ये सड़कों पे उतर के एनआरके क्यों फैलाने की कोशिश कर रहे, लोगों को क्यों भड़काने की कोशिश कर रहे। वैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक वाक्य इस्तेमाल किया था और मैं कोट करता हूं, व्हेन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स आर अवेलेबल अबैंडनिंग देम इज द ग्रामर ऑफ एनआरकी अनकोट। जब संवैधानिक रास्ते, संवैधानिक मार्ग आपके पास उपलब्ध है, तब आप उसको जब नहीं फॉलो करते हो, उसकी जब इज्जत नहीं करते हो, आप दर्शाते हो कि आप एनार्किस्ट हो और एनार्की के रास्ते में विश्वास करते हो। और मुझे लगता है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी वास्तव में सबसे बड़ा संविधान का अपमान करती है और एनार्की सड़कों पे दिखाती है, ये देश की जनता देख रही है। और फाइनल दसवां सवाल, अगर सही माने में उनके पास कोई प्रूफ है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, अगर सही माने में कोई वोट चोरी का प्रमाण है उनके पास, तो कोर्ट को क्यों नहीं दिया, इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं दिया? अरे यहां इनकी तो इतनी बेवकूफी है कि एक पिटीशन भी ठीक से फाइल नहीं कर सकते, इतने बड़े बड़े कानूनी वकीलों को इन्होंने पार्लियामेंट में राज्यसभा की सीटें दे रखी है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन फाइल करते हैं उसमें 14 कमजोरियां हैं, 14 डिफेक्ट्स कोर्ट ने सामने लाया है। यहां तक कि कोर्ट फी भी ठीक से नहीं भर सकते हैं, उसमें भी पैसे कम भरे हैं। मैं समझता हूं कांग्रेस अपनी नाकामियों के लिए खुद जिम्मेदार है, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का भविष्य अंधेरे में है, जनता भी देख चुकी है, कांग्रेस के नेता भी देख चुके हैं। जो व्यक्ति एनआरकी में बिलीव करे, झूठ और फरेब पे अपनी पूरी राजनीति करे, और जो पार्टी के नेता एक कोर्ट का एफिडेविट, कोर्ट का पिटीशन ठीक से नहीं फाइल कर पाते हैं, एक आईडी का जेरोक्स ठीक से भर नहीं सकते कोर्ट में, मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी का आईडी भी पढ़ा नहीं जा रहा है, 220 रुपए भी ठीक से कोर्ट फी नहीं पे की, ऑथराइजेशन भी मिसिंग है एफिडेविट में, मुझे लगता है ऐसी पार्टी और ऐसा नेता क्या देश को भविष्य देगा, क्या देश के 140 करोड़ लोगों के आशा अपेक्षाओं को पूरा करेगा, क्या नेतृत्व विश्व के सामने देश का रखेगा। ये उन्होंने पूरी तरीके से अपने आप को बेनकाब करके चंद दिनों के अपने व्यवहार से पूरी तरीके से साबित कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद आदरणीय पीयूष गोयल जी। मेरा भारत सरकार में मंत्री आदरणीय राजीव रंजन सिंह जी से आग्रह कि अपना संबोधन करें।
2: मित्रों, पीयूष जी ने अभी बहुत विस्तार से बताया और कई प्रश्न इन्होंने पूछा है। मुझको नहीं लगता है कि राहुल गांधी जी के पास एक भी प्रश्न का जवाब होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कई दिनों से इस देश में जिस तरह नौटंकी और ड्रामा केयर के देश भर में अराजकता कायम करने का प्रयास किया जा रहा है, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, मुझको नहीं लगता है कि इस देश की जनता कभी इसको स्वीकार करे। देश में संविधान सर्वोपरि है, परिवार पर सर्वोपरि नहीं है, उनके लिए उनका परिवार सर्वोपरि है और अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं। आप आज सर्वोच्च न्यायालय के सामने प्रदर्शन करें, आज तक देश के इतिहास में कभी हुआ कि कोई राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके प्रदर्शन करेगा? आज तक देश के इतिहास में नहीं हुआ। क्यों कर रहे हैं आप? किस तरह का आचरण आप कर रहे हैं? आप सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर होती है और याचिका आपने जो दायर किया वो कैसी याचिका है उसका भी विस्तार से पीयूष जी ने बता दिया। तो आप याचिका नहीं दायर कर सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका पूरा प्रयास जो पिछले कई दिनों से चल रहा है, उस प्रयास का एकमात्र तात्पर्य यह है कि इस देश की जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को बदनाम करके उन पर दबाव बनाया जा सके। भाई राहुल जी, ये मोदी जी का शासनकाल है और मोदी जी के शासनकाल में दबाव काम नहीं करता है। आप आज मुख्य चुनाव आयोग के बारे में विस्तार से पीयूष जी ने बताया कि किस तरह से आपने किया। आपको आदत बनी हुई है, आप इसके हैबिचुअल हैं कि आपको चाहिए कमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो आपके प्रति वफादार हो। पीयूष जी ने बताया चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के का विस्तार से एक करके उन्होंने बताया। अब आप सर्वोच्च
0: कांग्रेस इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता के ऊपर सवाल उठाती है, पर पूरी तरीके से नजरअंदाज करती है अपने खुद के काम को, अपने खुद के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार ने इलेक्शन कमीशन को स्वावलंबी तरीके से देशहित और जनहित में अपने काम करने के लिए पूरी तरीके से ऑटोनॉमी दी है, और कोई भी इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट हुआ हो उसको कोई राजनीतिक लाभ दिए कभी भी देने का प्रयास नहीं किया है। उनको अब ईमानदारी से काम करने दिया और जो कानूनी प्रावधान है उसके हिसाब से उनको कोई राजनीतिक पद देने का कभी गुनाह नहीं किया। लेकिन राहुल गांधी जी की अगर ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, जिसको वो बड़ा कन्वीनियंटली नजरअंदाज कर देते हैं, तो उन्होंने एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पार्टी टिकट पे कैंडिडेट बनाया, एक को यूनियन कैबिनेट में लिया, दो इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को गवर्नर बनाया, और एक बार तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कहने पे कि उनके नीचे काम करने वाला इलेक्शन कमिश्नर पूरी तरीके से कांग्रेस की एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, उसको निकालने से इनकार कर दिया। मेरे इतना पक्षपात हमने शायद ही कभी कोई सरकार में देखा हो जितना कांग्रेस ने अपने रवैये में दिखाया। आप शुरू में देखें तो टीएन सेशन जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, कांग्रेस बड़ा उनका गुणगान गाते थे कि ईमानदारी की उनकी फियरलेसनेस पे, और उसके बाद क्या किया, 1999 में श्री एल के अडवाणी जी के सामने उनको खड़ा रहने के लिए मौका दिया कांग्रेस के टिकट पे। अब अगर वो इतनी ईमानदारी व्यवस्था चलाते थे इलेक्शन कमिश्नर के रूप में, तो फिर एक पार्टी के कैंडिडेट, वो भी इतने इंपॉर्टेंट इलेक्शन में, क्या अडवाणी जी के खिलाफ खड़े करना, क्या ये एक प्रकार से उनको रिवॉर्ड करने का काम नहीं है? श्री एमएस गिल चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे 1996 से 2001 तक, 5 वर्ष के लिए, और मजेदार बात, उनको पद्म विभूषण से नवाजा गया जब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उस वक्त, यानी 2000 में, सन 2000 में सिटिंग सीईसी को पद्म विभूषण देना, क्या ये लालच नहीं है? क्या ये एक प्रकार से उनको रिश्वत देने का काम नहीं हुआ? और आप एक आप देखें तो ये सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है भारत का, ये उनकी चापलूसी कारनामों का एक प्रकार से रिवॉर्ड देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया।
3: लुक, दिस इन्वेस्टमेंट गुरु स्टेप्स विल डबल योर मनी, जस्ट क्लेम द ऑफर।
4: डबल योर मनी फ्रॉम एनी रैंडम ग्रुप। पे अटेंशन, promising double returns, they'll lure you in tight. Unverified groups will send fake tips overnight, emptying your pockets before you can fight. SEBI and NSE advice, consult only SEBI registered advisors and make payments only to verified accounts or UPI IDs. An investor awareness initiative by SEBI and NSE.
5: Presented by National Stock Exchange. Co-powered by
6: Ujjivan Small Finance Bank.
7: Veka, India's largest selling UPVC window.
8: And it's time for the Business Today Show. Viewers, first up, let me get you all the action from the corporate and the financial world right now. SBI Research calls for scrapping LTCG tax on equities and extending the holding period to 2 to 3 years from the current 1 year amid sustained foreign investor outflows and subdued market returns. Indian markets buck the recent trend as strong HCL Tech Q2 results boost the tech stocks back home. Sensex surges 1,000 points to trade near 72,900. The Nifty is up 300 points to trade near 22,700 levels, even as South Korea's Kospi has plunged over 5% amid AI boom worries. The rupee's strengthening trend continues for the second straight session, gaining 60 paise to trade near 95 against the dollar, hitting a one-month high. The rally follows the RBI's widening forex curbs aimed at easing pressure on the currency. Tata Sons Chairman N. Chandrasekaran says India must stay invested in semiconductors despite the time it may take to deliver returns. He stresses that chips are critical to making India's future long-term strategic investments more important than the near-term targets. Big relief for merchants as this festive season, the NPCI has deferred the rollout of the UPI MDR on select merchant transactions beyond October 15, pushing the implementation to after Diwali now. The move postpones the proposed charges, offering a breather to the businesses during festive rush. Big breaking coming in, and this is with regards to the big finance minister statement coming in on LTCG tax and STT as well. Finance minister has been talking about how she's been keenly hearing the debate, and both have been very well discussed as well. Finance minister also says we have to treat all assets at par. Also, finance minister talking about it is too close to the budget for her to speak at this point in time. Let's listen in to what she had to say.

0: CBU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: वक्त के साथ कदम मिलाकर सेनको ने नए टेक्नोलॉजीज भी अपनाए, पर बिना अपने रूट्स को भूले।
1: टिन रूट्स की बुनियाद है 100% प्योर गोल्ड, ऑनेस्ट प्राइसिंग, कस्टमर फर्स्ट एटीट्यूड,
2: एंड सेनको सपोर्ट्स एनवायरनमेंट केयर और वुमेन एम्पावरमेंट।
3: एक परिवार, अटूट भरोसा।

0: स्टूडेंट्स ऑपोजिशन साथ में आ गया है, सिविल सोसाइटी साथ में आ गई है और सब लोग मिलकर ये आंदोलन लड़ेंगे। और अब देखिएगा कि फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस भी आएंगे, वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेड यूनियंस भी आएंगे, हर तरह के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस तो ऑलरेडी हैं, सब तरह के ऑर्गेनाइजेशन सिविल सोसाइटी के आएंगे, क्योंकि हमारे ये लोकतंत्र की लड़ाई है, सब लोग साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और हम लोग जीतेंगे।
1: अब आपके सामने CPM के नेता बेबी बात करें।
2: दिस अनएक्सपेक्टेड दिस, यू सी वी ऑल नो जो आदमी निष्पक्ष अंबेडकर का काम करना था ज्ञानेश कुमार, वो रूलिंग पार्टी का टीम ने ज्वाइन किया, इसलिए इनका खिलाफ हमारा संघर्ष आगे जाता है। और जो संघर्ष करने के लिए एक डेसिग्नेटेड जगह था जंदर मंदिर, इनका चोरी भी करता है, वोट चोरी करता है, संघर्ष का जगह का चोरी करता है, जनतंत्र का चोरी करता है, इसका खिलाफ एकजुटा हमारा संघर्ष आगे जाएगा। आप सबका मदद इसके लिए मांग करके मैं खत्म करता हूं।
1: थैंक यू सागरिका घोष जी।
3: जी आप
1: बैठूंगा।
4: थैंक यू वेरी मच। एवरी डे इट इज बिकमिंग क्लियर दैट the Gyanesh Kumar headed election commission is destroying free and fair polls in India. As long as the Gyanesh Kumar headed election commission continues.
5: All right, no particular plan being laid out at the moment from the India bloc, but the leaders from different political parties reinstating their demand for the removal and ouster of Gyanesh Kumar. We'll just take a very quick break and come back with all the very latest. Stay tuned to India Today.

0: यार लोन भूल गया मैरी इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन्ड कार लोन टू व्हीलर लोन
2: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
3: इट उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस

0: हर बार वही गोल्ड ज्वेलरी कैसे पहन सकती हूँ? पर इस जमाने में नई नई गोल्ड ज्वेलरी खरीदना भी तो इम्प्रैक्टिकल है, तो फिर सेनको का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज।
1: एंजॉय करें 0% डिडक्शन किसी भी ज्वेलर के गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज पर और खरीदें अपने पसंदीदा सेनको गहने।

0: So many payment apps, but which one is safe?
1: Then switch to Bheem. It is completely safe and reliable. Keep getting rewards as well. You can also get 40 rupees cash back on your first payment above 40 rupees. Use Bheem app to pay.
2: It's the Mahi way.
3: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है। ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है, ये है एक लेगेसी।
4: You know, designs कितने हैं? लाख से भी ज्यादा डूड।
5: और सारे हैं BIS Hallmark Certified। खूबसूरत कारीगरी भी, हाई क्वालिटी भी।
6: एक परिवार, अटूट भरोसा।
7: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
8: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
9: सोच बदलो और बैंक भी।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

आपने सुना होगा LPA, LPA एक लाइपोप्रोटीन है, एक ब्लड में मेजर होता है। अब LPA देखा गया है कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। पहले सोचते थे कि अगर फैमिली में चल रहा है तो शायद एक मार्कर है जिससे पता चल जाता है कि शायद हार्ट डिजीज ज्यादा होगी। अब ये एक मार्कर, ये अब ये रिस्क फैक्टर है। और हमारे हिंदुस्तान में या साउथ ईस्ट एशिया में ये वेस्ट से ज्यादा पाया जाता है। तो दिस इज अगेन जेनेटिक्स। हमारे लोगों में LPA बहुत हाई है। अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में ये पॉपुलेशन बेस्ड स्टडीज नहीं हुई है, बट एटलीस्ट ग्रुप्स में देखा गया है और दूसरे कंट्रीज की पॉपुलेशन बेस्ड स्टडीज में देखा गया कि हिंदुस्तान में LPA ज्यादा होता है। और ये LPA सिर्फ अगर वेस्ट में LPA हाई हो तो अगर हम कहेंगे कि डेढ़ गुना रिस्क फैक्टर ज्यादा बढ़ गया, बट हिंदुस्तानी में ये भी देखा गया कि LPA सेम लेवल का LPA हाई हो तो हिंदुस्तानी में तीन गुना ज्यादा हार्ट डिजीज हो जाता है। सो वी आर सफरिंग फ्रॉम टू साइड्स ऑफ जेनेटिक्स। और फिर वो जो बात आई कि और क्या चीजें हैं हिंदुस्तानियों में, तो वो तो क्लियर है, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ हाइपरटेंशन। 30% एडल्ट्स अबव द एज ऑफ 30 हाई ब्लड प्रेशर से सफर कर रहे हैं। और मैंने कह ही दिया कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो हमारे बड़े में है, स्पेशली लो HDL कोलेस्ट्रॉल और रेस ट्राइग्लिसराइड्स। तो एक्चुअली यही है हमारा जीन्स और यही है हमारी किस्मत। सो एक एक हिंदुस्तानी एक लोडेड गन है जिसको हम कहेंगे कि अगर ट्रिगर दबा तो हार्ट अटैक हुआ, अनफॉर्चुनेटली।

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: So many payment apps, but which one is safe?
2: Then switch to Bheem. It is completely safe and reliable. Keep getting rewards as well. You can also get 40 rupees cash back on your first payment above 40 rupees. Use Bheem app to pay.
3: It's the Mahi way.
4: यार लोन भूल गया मैरी
5: जस्ट अ गुड बैंक ना
6: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
5: स्मॉल
6: वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
5: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट अस उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: न्यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: कांग्रेस इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता के ऊपर सवाल उठाती है, पर पूरी तरीके से नजरअंदाज करती है अपने खुद के काम को, अपने खुद के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार ने इलेक्शन कमीशन को स्वावलंबी तरीके से देशहित और जनहित में अपने काम करने के लिए पूरी तरीके से ऑटोनॉमी दी है, और कोई भी इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट हुआ हो उसको कोई राजनीतिक लाभ दिए कभी भी देने का प्रयास नहीं किया है। उनको अब ईमानदारी से काम करने दिया और जो कानूनी प्रावधान है उसके हिसाब से उनको कोई राजनीतिक पद देने का कभी गुनाह नहीं किया। लेकिन राहुल गांधी जी की अगर ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, जिसको वो बड़ा कन्वीनियंटली नजरअंदाज कर देते हैं, तो उन्होंने एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पार्टी टिकट पे कैंडिडेट बनाया, एक को यूनियन कैबिनेट में लिया, दो इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को गवर्नर बनाया, और एक बार तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कहने पे कि उनके नीचे काम करने वाला इलेक्शन कमिश्नर पूरी तरीके से कांग्रेस की एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, उसको निकालने से इनकार कर दिया। मैंने इतना पक्षपात हमने शायद ही कभी कोई सरकार में देखा हो जितना कांग्रेस ने अपने रवैये में दिखाया।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: ordered the country's cybersecurity agency to investigate. While officials are coordinating with European counterparts over possible wider risks, for supermarkets, the immediate damages spoiled inventory and disrupted sales. But the bigger warning goes far beyond France's food aisle. In today's connected economy, hackers are no longer just stealing data. And this time, the cyber attack didn't just freeze operations. It turned up the heat too. Bureau Report, Business Today Television.
1: आप महामहिम राष्ट्रपति जी के पास गए, वहां पर भी आपको कहा गया कि शिकायत के साथ सबूत दीजिए, तो आप बगले झांकने लगे, भाग गए, चुप्पी साध ली। और सुप्रीम कोर्ट ने तो श्रीमान राहुल गांधी जी से साफ साफ कह दिया कि कोर्ट को आप अपनी राजनीति का रणक्षेत्र नहीं बना सकते। इनका फंडा बहुत क्लियर है, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का, राज नहीं तो अराजकता फैला दो। राहुल गांधी जी कहने के लिए तो नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन एक ऐसे नेता हैं जिनको न तथ्यों का पता है, न तर्क का पता है, न नियम कायदे कानून का पता है। उन्हें तो बस इतना पता है कि अराजकता फैलानी कैसे है, अस्थिरता लानी कैसे है, संवैधानिक पदों को और संस्थाओं को नीचे दिखाना कैसे है, और दुनिया भर में भारत का नाम बदनाम कैसे करना है, छवि को कमजोर कैसे करना है। यह दुर्भाग्य है देश को कभी इतना अस्थिर, अराजक, अगंभीर नेता प्रतिपक्ष के तमाशे और नखरे नहीं देखने पड़े।
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है, ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
2: ये है एक लेगेसी।
3: यू नो डिजाइन्स कितने हैं? लाख से भी ज्यादा डोर
4: और सारे हैं BIS हॉलमार्क सर्टिफाइड। खूबसूरत कारीगरी भी, हाई क्वालिटी भी।
5: एक परिवार अटूट भरोसा।

मैं आज राहुल गांधी को चैलेंज देना चाहता हूं कि पहले अपना ज्ञानेश कुमार का समय जितना आपका सरकार बने पहले सबको आप रिजाइन देने बोलो। केरला में केरला का सरकार को रिजाइन देने बोलो, आप झारखंड में रिजाइन देने बोलो, आप कर्नाटक में रिजाइन देने बोलो, आप तेलंगाना में रिजाइन देने बोलो और आप तमिलनाडु में आपका अलायंस सरकार को रिजाइन देने बोलो और आप अनाउंस भी करो कि अगर ज्ञानेश कुमार सीईसी रहेगा तो अगले उत्तर प्रदेश चुनाव में नहीं लड़ूंगा।

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: यार लोन भूल गया मैरी।
2: इट्स
1: जस्ट अ गुड बैंक ना।
3: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
1: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
3: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन।
4: There's nothing small about
5: us. Oh, Jeevan, nothing small about us.

0: आज लोग बहुत निराश हैं इस राज से, और मैं समझता हूँ इसके पीछे पुलिस का हाथ तो है ही, क्योंकि ये पैसे लिए बगैर ड्रग नहीं बिक सकती, और शरेआम परागा सारे पंजाब में बिक रही है।
1: लोगों के मन से डर हट गया है और ये लगातार निरंतर इस प्रकार पंजाब में हो रहा है। आज पंजाब लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह कलैप्स कर गया है, यहाँ पर ड्रग माफिया काम कर रहे हैं, यहाँ पर ड्रग माफिया पुलिस पर लॉ एंड ऑर्डर पर हावी है।
2: TIAP government, which faces elections next year, promised to act.
3: जो भी हुआ है बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ है, पुलिस अपना एक्शन लेगी, किसी को भी लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
2: सपोर्टर्स ऑफ झोटा स्टेज्ड अ धरना इन मानसा डिमांडिंग द अरेस्ट ऑफ द अक्यूज्ड। द मार्केट वाज शट डाउन आफ्टर द शूटिंग। ड्रग अब्यूज इज अमंग द मेन इलेक्शन इश्यूज इन पंजाब। And the Bhagwant Mann government will face many questions over law and order when campaigning begins. With Kamaljit Kaur Sandhu, Bureau Report, India Today.
4: Troubling scenes there from Punjab. Okay, let me leave you with our image of the day. Tamil Nadu Chief Minister Vijay was in Andhra Pradesh today and visited the Kanaka Durga Temple in Vijayawada. Later meeting Andhra Chief Minister Chandrababu Naidu for talks on interstate water sharing. Maybe you need all the chief ministers of the south to come together to resolve their issues collectively. That's our image of the day. You stay well, stay safe. Good night, Shubhratri. Jai Hind. Namaskar.

आप महामहिम राष्ट्रपति जी के पास गए, वहां पर भी आपको कहा गया कि शिकायत के साथ सबूत दीजिए, तो आप बगले झांकने लगे, भाग गए, चुप्पी साध ली। और सुप्रीम कोर्ट ने तो श्रीमान राहुल गांधी जी से साफ साफ कह दिया कि कोर्ट को आप अपनी राजनीति का रणक्षेत्र नहीं बना सकते। इनका फंडा बहुत क्लियर है, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का, राज नहीं तो अराजकता फैला दो। राहुल गांधी जी

कहने के लिए तो नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन एक ऐसे नेता हैं जिनको न तथ्यों का पता है, न तर्क का पता है, न नियम कायदे कानून का पता है। उन्हें तो बस इतना पता है कि अराजकता फैलानी कैसे है, अस्थिरता लानी कैसे है, संवैधानिक पदों को और संस्थाओं को नीचे दिखाना कैसे है, और दुनिया भर में भारत का नाम बदनाम कैसे करना है, छवि को कमजोर कैसे करना है। ये दुर्भाग्य है देश को कभी इतना अस्थिर, अराजक, अगंभीर नेता प्रतिपक्ष के तमाशे और नखरे नहीं देखने पड़े।

0: The people who have done this, Mr. Modi, who is the main architect, Mr. Amit Shah, who is the implementer, Mr. Gyanesh Kumar, and others, they need to understand that the net is closing around them. It is not going to be so simple that you can destroy the Indian Constitution and get away with it.
1: जो programs इंडिया गठबंधन की ओर से चलाया गया, राहुल जी और दूसरे नेता भी इसको बहुत ही गंभीरता से लेके जनता के समस्याओं को सुलझाने के लिए वो काम किए और बहुत ही बढ़िया सक्सेस आपने देखा होगा। शायद ही इतनी बड़ी संख्या में लोग कभी नहीं जुड़े दिल्ली में, ये पहली बार है जो खुद अपने आप को सारे नौजवान लोग, साथियों, सभी लोग मिलके आए। जो मोदी का प्लान है वोट चोरी का, उसको पूरा एक्सपोज करने के लिए सारे लोग तैयार हो गए।

0: यू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: Yesterday, you saw an expression, not of the political party standing here, but an expression of the people of India. We were there, but what happened yesterday could not have happened without the expression of the average citizen of this country, non-political citizen of this country. So the first thing as a group we would like to do is would like to thank the people of Delhi, the people of India, who stood with us against what is being done. This is not about us. This is about the people of India. This is about the future of the people of India.
1: Nainesh Kumar ek aisa mafia hai jisne pure system ka apradhikaran kiya. और ऐसे माफिया से कैसा लड़ना है और कैसा निपटना है हमको मालूम है. 10-12 साल तक मोदी और शाह ने ये देश को डरा कर धमका कर रखा था. अब डरने की बारी उनकी है. अब डर कर बैठे हैं. पूरा 4 लाख आर्म फोर्सेस यहाँ लगा कर अंदर बैठे हैं. लेकिन ये जो संघर्ष है राहुल जी के लीडरशिप में वो जारी रहेगा. दिल्ली में रहेगा, स्टेट में रहेगा, हर शहर में रहेगा.

0: है, आज पंजाब लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह कलैप्स कर गया है। यहाँ पर ड्रग माफिया काम कर रहे हैं, यहाँ पर ड्रग माफिया पुलिस पर लॉ एंड ऑर्डर पर हावी है।
1: TIAP government which faces elections next year promised to act.
2: जो भी हुआ है बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ है, पुलिस अपना एक्शन लेगी, किसी को भी लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
1: सपोर्टर्स ऑफ झोटा स्टेज्ड अ धरना इन मानसा डिमांडिंग द अरेस्ट ऑफ द अक्यूज्ड। द मार्केट वाज शट डाउन आफ्टर द शूटिंग। ड्रग अब्यूज इज अमंग द मेन इलेक्शन इश्यूज इन पंजाब एंड द भगवंत मान गवर्नमेंट विल फेस मेनी क्वेश्चंस ओवर लॉ एंड ऑर्डर व्हेन कैंपेनिंग बिगिंस। With Kamaljeet Kaur Sandhu, Bureau Report, India Today.
3: Troubling scenes there from Punjab. Okay, let me leave you with our image of the day. Tamil Nadu Chief Minister Vijay was in Andhra Pradesh today and visited the Kanaka Durga Temple in Vijayawada. Later meeting Andhra Chief Minister Chandrababu Naidu for talks on interstate water sharing. Maybe you need all the chief ministers of the south to come together to resolve their issues collectively. That's our image of the day. You stay well, stay safe. Good night, Shubhratri. Jai Hind. Namaskar.

0: But our top story at the moment, the breaking news we're getting, Home Minister Amit Shah has finally broken his silence on the SIR debate and has hit out at Congress leader Rahul Gandhi over the protest. Amit Shah claiming that Rahul can't win people's trust by lying. Home Minister claims Congress lost the election even before the SIR exercise. Home Minister accusing Rahul Gandhi of using SIR to shield ghuspetias or intruders. Amit Shah claiming politics of negativity has been rejected, but he stayed silent on the police's role in the Delhi protest. Listen in to what Amit Shah had to say.
1: मैं राहुल गांधी जी को बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी एसआईआर के बहाने घुसपैठिया बचाने का आपकी जो कार्य योजना है उसको देश की जनता भली भांति समझ चुकी है और अब भारत की जनता आपके झांसे में आने वाली नहीं है। मैं श्री राहुल गांधी जी को सीधा पूछना चाहता हूं कि क्या ये एसआईआर का परिणाम है? एसआईआर तो 24 के बाद चालू हुआ। आप जब से कांग्रेस के मुख्य नेता के रूप में आए हैं और बाद में अध्यक्ष के रूप में आए हैं, लीडर ऑपोजिशन के रूप में आए हैं, कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हारे। आपको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। फैब्रिकेटेड मीडिया इवेंट, झूठ की गूंज कर

0: Good evening. You're watching India First. I'm Gaurav Sawant. Union Home Minister Amit Shah has come out all guns blazing, hitting out at Leader of Opposition and Senior Congress Leader Rahul Gandhi. So he's hit out at the Congress in particular and the Opposition India Alliance in general, telling the Congress to be prepared for another electoral defeat in 2029. Amit Shah hit out at the Congress. He exposed their repeated electoral defeats and asked Rahul Gandhi to introspect instead of blaming the Election Commission or the Chief Election Commissioner. Amit Shah declared Congress Party's 2029 loss was guaranteed the way they were moving forward. He rejected the opposition's claim that the defeats were linked to the special intensive revision of the electoral rolls. Amit Shah reminded the Congress of their long electoral drought. For example, in states like Gujarat, where the Congress hadn't been in power for four decades, or Tamil Nadu, where the Congress had been out of power for even longer, or Bengal, he urged Rahul Gandhi to learn from electoral defeats and setbacks, introspect, and stop blaming the EVM or the EC. He accused the opposition of blaming the Election Commission, shielding alleged infiltrators, the ghuspetias, and pursued what he called was politics of negativity. Amit Shah's message was sharp and clear. Stop blaming the system, rethink your strategy, and prepare for another electoral battle, or be prepared to lose even the 2029 Lok Sabha elections. I'll get you more on the story, but first, let's listen in to the Union Home Minister, some of the key points that he made.
1: मैं श्री राहुल गांधी जी को सीधा पूछना चाहता हूं कि क्या ये एसआईआर का परिणाम है? एसआईआर तो 24 के बाद चालू हुआ. आप जब से कांग्रेस के मुख्य नेता के रूप में आए हैं और बाद में अध्यक्ष के रूप में आए हैं, लीडर ऑपोजिशन के रूप में आए, कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हारे. आपको आत्मचिंतन करने की जरूरत है. फैब्रिकेटेड मीडिया इवेंट, झूठ की गूंज कर आप देश की जनता का विश्वास हासिल नहीं कर सकते. पूरी 14 पार्टी का कैडर इकट्ठा कर 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में 8,000 की भीड़ इकट्ठी कर आप देश की आवाज नहीं बन सकते हो. मेरा कांग्रेस पार्टी से निवेदन है कि देश की आवाज खेत खलियानों में, गांवों में, दूर सुदूर पहाड़ियों पर, जंगलों में और नदियों के किनारे भी है. आपकी वहां कोई रीच नहीं है. देश के कई सूबे ऐसे हैं, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, आपको कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी को वहां की जनता ने नकारा है, हराया है. 41 साल के बाद आज भी एक भी चुनाव कांग्रेस नहीं जीत पाई है. अंतिम चुनाव वो 41 साल के पहले 1985 में जीते थे. उसके बाद लगातार गुजरात में उनकी हार हो रही है. मैं राहुल जी को ये भी पूछना चाहता हूं कि क्या ये एसआईआर का परिणाम है? भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता, मोदी जी की लोकप्रियता को आप एसआईआर का परिणाम कहकर झुटलाते हो. आपको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए. एक बहुत बड़े सूबे में जहां आपका हमेशा शासन रहता था, वहां 41 साल से एक भी चुनाव आप नहीं जीत पाए. ये इनके लिए आत्मनिरीक्षण का बहुत बड़ा विषय है.
0: दिस इज टेकिंग द बैटल राइट बैक इनटू द ऑपोजिशन कैंप, बिकॉज अर्लियर टुडे द ऑपोजिशन ब्लॉक हैड अ टी पार्टी. द इंडिया ब्लॉक met for high tea at Rahul Gandhi's residence. And this is where they worked on their strategy against not just the Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar, but also against the Narendra Modi government. Rahul Gandhi upped the ante against the Narendra Modi government. He pledged to fight whatever it takes and however long it takes, whether it takes 2 months, 3 months, 6 months, a year, or even 2 years. He said he had, or the party had, perseverance. He said that the battle against the Prime Minister, the Home Minister, and the Chief Election Commissioner will continue. The Congress Party is trying to frame their battle